FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी

0: विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। चिंतन

तपस्या से ही मनुष्य के सभी विकार शुद्ध हो जाते हैं। तप विकारों का नाश करता है। प्रतिदिन वेदाभ्यास, शक्ति के अनुसार पंच महायज्ञ और शांति धारण करना, ये कार्य महापातकियों के विकारों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। जैसे अग्नि अपने तेज से क्षण भर में ही लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूपी अग्नि से सभी विकारों का नाश कर देता है।

भगवान नाम की महिमा अगाध है, अपार है, अमाप है, किंतु जरूरत है तो बस सच्चे हृदय से भगवान नाम लेने की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का भाग 168।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नरनारी श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्रीराम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर

प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, प्रातः 7:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम सुबह सुहानी का। इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देंगे फिरोज शाह मेहता की जन्म जयंती पर। 7:40 का समय रहेगा कार्यक्रम शुभ प्याग का। 8:30 पर आप सुनेंगे हिमाचली लोकगीत। प्रातः 9:00 समय रहेगा फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का। 10:00 सुनिए कार्यक्रम गीतों का कारवां। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। 11:05

मिनट पर समय रहेगा कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की का। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 समय रहेगा फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनो सखी। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे कुछ भजन। 5:25 का समय रहेगा कार्यक्रम युवा मंच का। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। मौजा ग्रांतियां ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। 7:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम खेती बाड़ी का। 8:00 सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। और 9:15 पर एक ही गायक के क्रम में आज सुनिए गायक किशोर कुमार के गाए कुछ गीत। 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम धाम गीतादि का। 10:30 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीत चित्रपट संगीत में। 9:20, 11:00, 3:00, 6:00, 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, 1:00, 5:00, 7:00 और 11:00 हिंदी में समाचार, 1:05, 5:05, 7:05 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

तो श्रोताओ, ये थी रूपरेखा हमारे आज की कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: उत्थापितः अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंहः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान् तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तं। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयं अवाप्तं। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं 24,300,000 मतैः पराजितवान्। असौ 1,50,164,000 मतानि प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीका भाई रबारी इत्येनं 30,000+ पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000+ पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 दिनांके एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठनीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधी विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्यां उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000+ राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थस्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णं इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमेरिकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिलों चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाहाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में 380 गांव जलमग्न हैं। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ हाजिर हैं कार्यक्रम सुबह सुहाने के संग के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियां, साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो रोजाना की ही तरह आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आज के शुभ विचार के साथ। श्रोताओ, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। जल्दी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावा देते हैं, जबकि धैर्य से लिया गया कदम

सफलता की ओर ले जाता है। याद रखिए, धीरे चलने वाला व्यक्ति भी बहुत आगे निकल जाता है यदि वह रुकता नहीं। आप स्वयं पर विश्वास रखिए, क्योंकि ईश्वर हर कठिन रास्ते के साथ एक नई शक्ति भी देता है। और श्रोताओं, हम जानते हैं कि आपको नई शक्ति और नई ऊर्जा मिलती है अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे आज के इतिहास के बारे में। श्रोताओ, आज 4 अगस्त है और 4 अगस्त का ये दिन इतिहास के पन्नों में विशेष महत्व रखता है। चार अगस्त 1914 में इंग्लैंड द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हुई थी। आज ही के दिन 4 अगस्त 2001 में रूस व उत्तरी कोरिया में सामरिक समझौता हुआ। आज ही के दिन 4 अगस्त 2004 में नासा ने एलिटेक्स सुपर कंप्यूटर केसी को कल्पना चावला नाम दिया। चार अगस्त 2007 में मंगल ग्रह की खोज के लिए फिनिक्स मार्स लैंडर नामक एक अमेरिकी अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण किया गया था। में आज ही के दिन सरकार ने भारतीय जहाज रानी निगम कौन व रत्न का दर्जा प्राप्त किया। चार अगस्त 1906 में भारत के राजनेता और एक स्वतंत्रता सेनानी यशवंत सिंह परमार का जन्म हुआ। और आज ही के दिन 4 अगस्त 1929 में भारतीय गायक और अभिनेता किशोर कुमार का जन्म हुआ। श्रोताओ, किशोर कुमार बहुत ही उम्दा गायक और अभिनेता के रूप में भारतीय सिनेमा में अपना रंग बिखेरते हैं और उनके गाने आज भी हम सबको याद हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में गाया ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे फिरोज शाह मेहता की जन्म जयंती पर। श्रोताओ, फिरोज शाह मेहता एक स्वतंत्रता सेनानी, न्यायविद तथा पत्रकार थे। वे एक उदार राजनीतिज्ञ थे जिनका प्रयास था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कट्टरपंथियों का अधिकार ना हो सके। वह बहुत से संस्थानों के जन्मदाता थे। मुंबई नगर पालिका के सदस्य होने के साथ ही वह नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे और इस संस्था के सुधार के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में सक्रिय होने के साथ साथ इसके अध्यक्ष भी रहे। वे मुंबई के एडवोकेट जनरल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे। वे मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़े रहे और उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र द बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना भी की। फिरोज शाह मेहरवाजी मेहता का जन्म बम्बई के एक धनी पारसी कुल में हुआ था, जिनके व्यापार की शाखाएं देश विदेश में फैली हुई थी। उन्होंने बीए और एमए की पढ़ाई की। इनकी असाधारण बुद्धिमता देखकर इन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां पर न्यायवर्ताओं की सर्वोच्च परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वह स्वदेश लौट आए। इंग्लैंड में वह लंदन भारतीय सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संपर्क में आए। यहीं से इनके राजनीतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक जीवन का शुभारम्भ हुआ। और कार्यक्रम में अब एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, आजकल मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह। जी हाँ, स्तनपान के प्रति जन जागरूकता लाने के मकसद से अगस्त माह के प्रथम सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह के दौरान माँ के दूध के महत्व की जानकारी दी जाती है। नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध अमृत के समान है। माँ का दूध शिशुओं को कुपोषण व अतिसार जैसी बीमारियों से बचाता है। स्तनपान को बढ़ावा देकर शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। शिशुओं को जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाने के लिए महिलाओं को इस सप्ताह के दौरान विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में रुक करेंगे समाचारों की सुर्खियों पर।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम स्वीकृति संख्या बढ़ा दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 38 जज काम करेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत अचानक करीब 5% टूटकर $83 प्रति बैरल पर आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो हटाने पर माफी मांगेगा मेटा। और अब देते हैं आपको जानकारी मौसम की। उत्तर भारत की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर हल्की से भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में भारी वर्षा का अलर्ट जारी है। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पश्चिम भारत में गुजरात के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि राजस्थान और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अगले कई दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। और कार्यक्रम में अब एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:40 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम शुभ प्याग का।

0: BCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
1: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
0: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
0: कार्यक्रम का अगला लोकगीत मानसिंह की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रयाग, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:55 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
3: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
2: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
4: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब देश एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में

0: दर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
4: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट होकर होकर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुण मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट्री कमेटी क्रिटिसाइजेस मेटा ओवर रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज वीडियो फ्रॉम फेसबुक, सीक्स अपॉलॉजी फ्रॉम सीईओ मार्क जुकरबर्ग। NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. US President Donald Trump warns Iran of last chance to reach an agreement with Washington. Tehran denies reports of negotiations. And Indian shuttlers to begin their campaign at Korea Masters 2026 badminton tournament today. And now the news in detail. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
7: ये माफी नामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए।
6: Prime Minister Modi has underlined that talents are honed and refined through continuous effort and dedication. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi noted that today, the youth of the country are imbibing these very qualities and illuminating India's name across the world. The National Democratic Alliance or NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, will be held in the

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए राकेश सिंह व साथियों की आवाजों में गाया ये लोकगीत।

0: अगर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जाँच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
3: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र, जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
2: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
4: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कुशल कुमार की आवाज में गाया ये लोकगीत।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे हिमाचली लोकगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9 बजे हैं और अब समय है फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का।
1: हेलो धर्मशाला,
2: हेलो धर्मशाला,
0: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं हाजिर हैं कार्यक्रम हेलो धर्मशाला के साथ और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं इस कार्यक्रम में आप करते हैं हमें फ़ोन और सुनते हैं अपनी पसंद के गीत। तो आज सबसे पहले आपको ये बता दें कि जिन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं वो फिल्में हैं दिल, एक दूजे के लिए, हिना, मुस्कान, पराया धन, राज, राम तेरी गंगा मैली, रोटी कपड़ा और मकान, वास्तव और वो लम्हे। इन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो धर्मशाला, हेलो, लीजिए। इन्होंने हमें कॉल किया लेकिन इनकी कॉल नहीं लग पाई। कोई बात नहीं, फिर ट्राई कीजिए। और आप सभी श्रोताओं को हमारा फ़ोन नंबर तो पता ही है लेकिन एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391, यानी 01892224391। इस नंबर पर कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। हेलो धर्मशाला।
3: अनुराधा जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, क्या हाल चाल हैं आपके? महेंद्र सिंह जी
3: बहुत बढ़िया है जी, मजे से है जी।
0: अच्छा, ये सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप?
3: रोटी कपड़ा और मकान का नरेंद्र चंचल और साथियों की गाया हुआ है, भाई महंगाई महंगाई।
0: ठीक है, और क्या हाल चाल है पंजाब के आजकल?
3: आजकल ठीक है जी, बारिश हो रही है कभी कभी।
0: कभी कभी हो रही है, रोज नहीं हो रही है?
3: रोज नहीं हो रही जी, कभी 30 से 34 दिन हो जाती है और मौसम कुछ सुहावना हो जाता है। अच्छा। लेकिन फिर जब धूप निकलती है तो फिर वही उमस भरा दिन जाता है।
0: गर्मी तो वैसी ही है ना, बरसातों में यही होता है कि थोड़ी सी बारिश होगी तो थोड़ी सी ठंडक आ जाती है लेकिन फिर गर्मी वैसी ही हो जाती है। लेकिन ये प्रकृति का नियम है ना, गर्मी होगी तभी बारिश होगी, आप भी इंतजार कीजिए।
3: हर मौसम अपनी जगह ठीक है जी, आप देखिए फसल पकने वाली है, मक्का भी पकने वाला है
0: जी,
3: और उसके बाद धान की भी तैयारी हो रही है
0: जी। बिल्कुल, हर फसल के लिए मौसम अपना मिजाज जो है बरकरार रखता है और मौसम के अनुरूप ही हमारी फसलें जो है वो उगती भी हैं, है ना।
3: चलिए,

0: जो क्रिया चक्र बना रखा है उसने बहुत सोच समझ कर बनाया हुआ है, तो उसके लिए सभी जीव जंतुओं के लिए भी है, हमारे लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, उसने सभी क्रिया जो है बिल्कुल सही रखी हुई है।
1: जी ठीक है महेंद्र सिंह जी, अब सुनिएगा आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
0: ठीक है राधा जी,
1: ठीक है जी,
0: नमस्कार।
1: ठीक है।

0: हेलो धर्मशाला।
1: नमस्कार जी, मैं राकेश कुमार मलेरकोटला पंजाब से बात कर रहा हूँ जी।
0: राकेश जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं ही फैक्ट्री में काम करता हूँ। फिल्म है जी पराया धन, लता मंगेशकर जी आवाज से सुना दिए गीत।
0: ठीक
1: मैं
0: है,
1: फैक्ट्री में काम करता हूँ जी।
0: और अभी काम पर ही हैं। चलिए, इनका फ़ोन जो है वो कट चुका है, लेकिन इन्होंने अपनी पसंद जो है वो ज़रूर हमें बता दी है, तो इनकी पसंद का गीत जो है वो उन तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आइए सुनते हैं फिल्म पराया धन का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो धर्मशाला।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार मैडम, मैं जल्दी से प्रबोध कुमार बोल रहा हूँ।
0: प्रबोध जी, पहले तो अपनी फरमाइश बताइए।
1: मैम, राज पिक्चर का कोई अच्छा सा?
0: कोई भी अच्छा सा। और प्रबोध जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं कपड़े की शॉप करता हूँ।
0: आज काम काज आजकल, लीजिए इनका नंबर भी जल्दी ही कट गया। कोई बात नहीं, इनकी फरमाइश जो है वो हम तक पहुंच गई है और इनकी फरमाइश हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो लीजिए प्रबोध जी, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो धर्मशाला यूं ही जारी रहेगा। प्रातः 9:30 पर भी कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। हिमाचल निर्माता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती आज, विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदेश भर में किया जा रहा है याद। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए एचआरटीसी के बेड़े में 1000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शामिल। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की अहम बैठक आज शिमला में, विभिन्न जनहित मुद्दों और विपक्ष की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता जारी, आज ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल निर्माता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज 120वीं जयंती है। राज्य के लिए उनके योगदान को आज विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से विशेष तौर पर याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में डॉक्टर परमार को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके पश्चात विधानसभा परिसर में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जहां विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया डॉक्टर परमार की याद में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस समारोह में हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार के जीवन पर वृत्त चित्र की प्रस्तुति होगी। राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा आने वाले समय में एचआरटीसी के बेड़े में 1000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएगी। ये बात कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोलन जिला के नालागढ़ से प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के लिए नई बस सेवा के शुभारम्भ के बाद कही। उन्होंने कहा कि जनता की मांग के अनुरूप एचआरटीसी नई बस सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी पिछले 52 वर्षों से प्रदेश के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं प्रदान कर रही है और राज्य में दुर्गम स्थानों तक बस सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन को सुगम बना रही है। एचआरटीसी वर्तमान में 27 वर्गों की रियायती यात्रा सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है।

0: भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित होगी। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी व विधायक रणधीर शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में आगामी विधानसभा के मॉनसून सत्र सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के लगभग 4 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश की जनता लगातार निराश हुई है और सरकार ने विकास व सुशासन के बजाय राजनीतिक प्रतिशोध, भ्रष्टाचार और जन विरोधी निर्णयों को प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसे लेकर मंडी जिला के धर्मपुर के संधोल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से गर्भवती और धात्री महिलाओं को योजना के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें बेहतर पोषण और नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए प्रशिक्षित किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी धनीराम ने बताया कि धर्मपुर परियोजना के सभी सर्कलों में ऐसे प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंडी जिला के धर्मपुर के संधोल सर्कल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ICDS धर्मपुर द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में 26 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को योजना के नए दिशा निर्देश, पात्र महिलाओं की पहचान, दस्तावेजों के सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन, NPCI मैपिंग और फेस रिकॉग्निशन आधारित डिजिटल सत्यापन की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम गर्भाधारण या पहली जीवंत संतान पर पात्र महिला को 5,000 रुपए जबकि दूसरी संतान बालिका होने पर 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 सितंबर से पूरी तरह डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी रजिस्टर पर नहीं बल्कि विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से संचालित होगी। ये निर्णय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। इस अवसर पर रोहित ठाकुर ने कहा कि डिजिटल मॉनिटरिंग से स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षा व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी। लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलोंग में 14 से 16 अगस्त तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव की तैयारियां तेज हो गई है। उपायुक्त व जनजातीय मेला समिति की अध्यक्ष किरण भंडारा ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनों और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के इच्छुक कलाकार और सांस्कृतिक दल 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष जनजातीय उत्सव के दौरान आयोजित कार्यक्रम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की समृद्ध संस्कृति, लोक कला और पारंपरिक विरासत पर आधारित होंगे। प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों की फीस में हुई बढ़ोतरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र विरोधी फैसला करार दिया है। ABVP ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, बागवानी विश्वविद्यालय नौणी और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में बढ़ाई गई फीस को तत्काल वापस लेने की मांग की है। छात्र परिषद ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता कर बढ़ाई गई फीस को छात्रों पर आर्थिक बोझ बताया। ABVP के प्रदेश सह प्रमंत्री भवानी ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 25-27%, नौणी विश्वविद्यालय में 52-62% और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 30-38% तक फीस बढ़ाई गई है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता जारी है, जिससे राज्य के अनेक स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा हो रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते 109 मार्ग अवरुद्ध है, जबकि 30 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार 7 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि आज ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा जिला के विभिन्न स्थानों में भारी बारिश की संभावना को

0: देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
1: अगर हम मौसम की बात करें, 7 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 4 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट ऊना बिलासपुर कांगड़ा में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसके उपरांत 5 अगस्त को कांगड़ा मंडी के लिए हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। फिर 6 अगस्त को बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा सोलन सिरमौर यहाँ में एक दो स्थानों में मॉडरेट कैटेगरी के साथ हैवी रेनफॉल हो सकती है एक दो स्थानों में। और फिर उसके उपरांत 7 अगस्त को चंबा कांगड़ा मंडी के लिए हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। तो ओवरऑल मानसून है वो काफी सक्रिय रहेगा और लगभग पूरे प्रदेश में ही हल्के से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा।
0: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की एक खबर है, हिमाचल को केंद्र से मिले 403 करोड़ 92 लाख रुपए। प्रतिनियुक्ति पर चल रहे दो अफसरों को केंद्र से मिली बड़ी जिम्मेदारी, शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, निपुण को आर्थिक मामले और विवेक को मिला युवा कार्य विभाग का जिम्मा। पंजाब केसरी की एक खबर है, 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं को छोड़ हिमाचल में वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में करने की तैयारी। मौसम पर अमर उजाला का शीर्षक है, भारी बारिश भूस्खलन से 4 पुल बहे, स्कूल भवन ध्वस्त, हाईवे समेत 109 सड़कें बंद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल निर्माता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती आज, विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदेश भर में किया जा रहा है याद। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए एचआरटीसी के बेड़े में 1000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी शामिल। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की अहम बैठक आज शिमला में, विभिन्न जनहित मुद्दों और विपक्ष की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता जारी, आज ऊना बिलासपुर और कांगड़ा जिला में भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का शेष भाग।
5: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
6: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो धर्मशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। हेलो धर्मशाला।
7: नमस्कार बहन जी। नमस्कार।
4: नमस्कार जी, जल्दी से अपना नाम बताइए और फरमाइश पहले।
7: बहन जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
4: अच्छा, अब अपनी फरमाइश भी बता दीजिए, फिर आपसे बात करते हैं।
7: बहन जी, कोई पुरानी फिल्म कौन सी है आज?
4: पुरानी है हीना एक दूजे के लिए। लीजिए, इन्होंने जल्दी ही हमारा साथ जो है वो छोड़ दिया। कोई बात नहीं, ये फिल्म पुरानी फिल्म का गीत सुनना चाहते थे, तो इनकी पसंद पर इनकी फरमाइश हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो आइए सुनते हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो धर्मशाला। हेलो, नमस्कार जी। आपने थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कीजिए क्योंकि आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है।
1: मैं कृष्ण चौहान बोल रहा हूँ, जासिमपुर से। हीना फिल्म का गाना सुनाइए।
0: कौन सा गीत?
1: हीना।
0: कौन सा गीत सुनेंगे फिल्म हीना का?
1: कोई भी सुना दी।
0: कोई भी सुना। ठीक है, इनकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं फिल्म हीना का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो धर्मशाला, हेलो।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, जल्दी से अपना नाम बताइए और फरमाइश।
1: सिमरन, कोई भी फरमाइश सुना दो।
0: कैसा सुनेंगे, नया या पुराना?
1: नया।
0: अच्छा, अब नाम भी बता दो अपना।
1: सिमरन।
0: सिमरन क्या करते हो?
1: पढ़ाई करती हूँ।
0: कौन सी क्लास में?
1: प्लस वन।
0: प्लस वन में, और क्या स्ट्रीम रखी है आपने?
1: आर्ट्स।
0: आर्ट्स, और इसमें कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है सिमरन?
1: मैम हिंदी।
0: हिंदी?
1: यस मैम।
0: अच्छा, और क्या करना पसंद करती हैं आप इसके साथ साथ? पढ़ाई तो आप करती हैं, अच्छा भी लगता होगा, लेकिन इसके साथ और क्या करना पसंद है?
1: मैम पेंटिंग।
0: पेंटिंग भी करती हैं?
1: यस मैम।
0: चलिए, अच्छी बात है, खाली समय आप ऐसे नहीं ज़ाया करती हैं और कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो आपको अब आपकी पसंद सुनवा दें।
1: यस मैम।

0: हेलो धर्मशाला।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जल्दी से फिल्म का नाम बताइए मैडम।
0: फिल्में हैं हमारे पास दिल एक दूजे के लिए, मुस्कान, वास्तव, इन फिल्मों की।
1: एक दूजे के लिए का गाना है ना, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, SP बाल सुब्रमण्यम और रति अग्निहोत्री आवाज में।
0: करते क्या हैं आप?
1: मैं SCCL में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कॉर्पोरेट में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ, नौकरी पीरियड में भी कार्यक्रम में आपको लाइव फोनिंग कार्यक्रम में जुड़ता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आप आकाशवाणी धर्मशाला से जुड़े रहते हैं और हमारे कार्यक्रम में सभी सुनते हैं।
1: जी मैडम, और नेटवर्क न कटे इसलिए जल्दी से अपने पसंद के गीत भी बता देता हूँ।
0: जी आपने बताया एक दूजे के लिए फिल्म का मेरे जीवन साथी है ना?
1: जी SP बाल सुब्रमण्यम और रति अग्निहोत्री।
0: जी बिल्कुल, आप तक पहुँच रहा है आपकी पसंद का ये गीत।
1: फोन शामिल किया मैडम, धन्यवाद।
0: ठीक है जी।
2: मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर। वो इंग्लिश।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडलबाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: प्यार का मौसम
0: बेशरम

0: हेलो धर्मशाला।
1: गुड मॉर्निंग मैडम जी।
0: गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मुस्कान फिल्म का गीत सुनाई नहीं।
0: आप अपना नाम भी बताइए और मुस्कान फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे वो भी बताइए।
1: कोई भी सुना देना। और विनोद कुमार बोल रहा हूँ।
0: लीजिए, इन्होंने अपनी फरमाइश तो जो है वो पूरी कर दी है, लेकिन उनकी फरमाइश जो है वो हम पूरा करेंगे। तो सुनिएगा विनोद जी अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो धर्मशाला।
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, कौन बोल रहे हैं और अपनी फरमाइश बताइए।
1: जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं। कौन सी फिल्म में बज गई? बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: दिल और वास्तव।
1: वास्तव मूवी का कोई भी प्यारा सा गीत सुनवा देंगे।
0: और क्या करते हैं योगेश जी आप?
1: हमारा खेती बाड़ी का काम है और अभी फिलहाल तो खेत ही आए हैं।
0: अच्छा, और क्या लगा रखा है अपने अपने खेतों में?
1: धान लगाए हैं सभी खेतों में, अभी खरीफ का समय है तो।
0: और अच्छे हैं इस बार पैदावार जो है धान की, अच्छी है?
1: फिलहाल तो अभी छोटे रूप में है, कटाई तो नवंबर के आसपास होगा।
0: नहीं, अभी छोटे में ही आपको बारिश जो है वो पर्याप्त चाहिए होती है धान की खेती के लिए, है ना? पानी
1: इस बार तो पूरे देश भर में बारिश थोड़ा सा अनियमित हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी वही स्थिति है। बाकी ठीक है, ट्यूबवेल वगैरह है तो जैसे तैसे करके अपना जतन कर रहे हैं।
0: चलिए, अच्छी बात है योगेश जी। अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
1: शुक्रिया।
0: ठीक है जी।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम का समय हो रहा है पूरा। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया विपिन कुमार ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और अब अपनी दोस्त अनुराधा को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: हेलो धर्मशाला,
1: हेलो धर्मशाला, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बजे हैं और अब समय है कार्यक्रम गीतों का कारवां का।

0: श्रोतो, आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन।
1: तुम से
0: कुमार शानू और अलका यज्ञ की आवाजों में आप सुन रहे हैं।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं साजन चले ससुराल फिल्म से। इस गीत को गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

श्रोतो, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं रंग फिल्म से। इस गीत को गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

श्रोता, इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं राजा भैया फिल्म से।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे गीतों का कारवा आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

0: बिल्कुल याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों की सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अगला हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं धीरे शर्मा की आवाज़ में।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल निर्माता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज 120वीं जयंती है। राज्य के लिए उनके योगदान को आज विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष तौर पर याद किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कैबिनेट मंत्री और गणमान्य लोगों के साथ आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर यशवंत परमार को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में निर्माण और उसे संजोए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बीच विधानसभा परिसर में आयोजित हो रहे श्रद्धांजलि समारोह में भी मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया डॉक्टर परमार की याद में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस समारोह में हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार के जीवन पर वृत्तचित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। समाचार कक्ष से मैं सरुपमा शर्मा।
0: प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है तथा आने वाले समय में HRTC के बेड़े में 1000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएगी। ये बात कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोलन जिला के नालागढ़ से प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के लिए नई बस सेवा के शुभारम्भ के बाद कही। उन्होंने कहा कि जनता की मांग के अनुरूप HRTC नई बस सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि HRTC पिछले 52 वर्षों से प्रदेश के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं प्रदान कर रही है और राज्य में दुर्गम स्थानों तक बस सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन को सुगम बना रही है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित होगी। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी व विधायक रणधीर शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में आगामी विधानसभा के मानसून सत्र सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 सितंबर से पूरी तरह डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी रजिस्टर पर नहीं बल्कि विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से संचालित होगी। ये निर्णय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। इस अवसर पर रोहित ठाकुर ने कहा कि डिजिटल मॉनिटरिंग से स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षा व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी। प्रदेश के सभी न्यायालयों में आगामी 12 सितंबर को इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के संरक्षण और न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में होगा। इस लोक अदालत में 37,000 से अधिक मामले आपसी समझौते से निपटाए जाएंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी के धर्मशाला स्थित उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इस महीने कांगड़ा व चंबा जिलों में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विषयों से जुड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संचालित किए जाएंगे। कार्यालय की सहायक निदेशक सिमरन ने बताया कि इन सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़े नीति निर्माण, विकास योजनाओं के मूल्यांकन और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने लोगों से सही व सटीक जानकारी देकर सर्वेक्षण कार्य में सहयोग करने की अपील की है। लगातार हो रही वर्षा और सतलुज पेयजल योजना में खराब हुए ट्रांसफार्मर की वजह से राजधानी शिमला में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। शिमला जल प्रबंधन निगम के प्रबंध निदेशक विजेंद्र ठाकुर के अनुसार शिमला शहर में विभिन्न इलाकों में तीसरे दिन पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

0: दी है। उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटों में विभिन्न पेयजल योजनाओं से शिमला के लिए 43 MLD पानी पंप हो पाया है, जबकि शहर की रोजाना पेयजल जरूरत 50 MLD से अधिक है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण सिल्ट अधिक बढ़ जाने से रोजाना पानी की पंपिंग में कमी आ रही है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता के चलते राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई स्थानों में बीती रात से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते 109 सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जबकि 30 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। सिरमौर जिला में लगातार हो रही वर्षा से गिरी जटोन बैराज बांध में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बांध प्रबंधन नदी के साथ लगते इलाकों में लोगों को लगातार सतर्क रहने के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। इस बांध से आज सुबह अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है, जिसके मद्देनजर नदी तटीय क्षेत्रों में अलर्ट किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार 7 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं गूंज पहाड़ों की कार्यक्रम

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, अगला हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लहरू राम की आवाज में।

मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए

0: 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
3: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत करती हूं आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
1: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
1: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कार्य जी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
1: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
1: जी,
2: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
1: जी, तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ, तो संकेत दीजिए।
2: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओ क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
1: या फिर श्रोताओ क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
2: अजीत जी, यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी, एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
1: विमलेश जी, यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें।
2: जी,

0: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
1: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
0: और तो और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
1: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
0: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है
1: जी।
0: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है
1: जी।
0: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
1: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं
0: जी।
1: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी
0: जी।
1: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए
0: जी। बिल्कुल सही श्रोताओं, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती
1: जी,
0: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति
1: जी।
0: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है
1: जी,
0: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
1: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं
0: जी।
1: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, AI का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप AI से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें
0: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि AI से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात, AI पर आश्रित ना हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, AI का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है
0: जी।
1: AI हमारी सहायता कर सकता है लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
0: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है
1: बिल्कुल,
0: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है
1: जी।
0: इसी प्रकार AI भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
0: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी

0: उसे बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
1: चलो चलो सर के पास, सर के पास चलते
2: हैं। सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
3: नमस्कार। और इतने सारे बच्चे, आजा आजा आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
4: सर मैं इशिता।
5: मैं हूँ चेताली।
6: मैं शुभेंदु।
7: और मेरा नाम है इंदु।
8: और मैं सोमेश।
3: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
4: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
3: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
6: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
8: सर फिर क्या होता है?
3: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
8: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
3: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
9: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
4: वाह, कितनी सुंदर बात है।
3: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
10: पौधा।
3: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
10: उल्टा?
3: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
8: फिर क्या हुआ?
3: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
6: यह तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
4: जी सर।
3: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
4: रसपान कैसे करते?
3: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
4: जी सर।
3: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
4: अच्छा अब समझ आया।
3: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
10: जी सर।
5: यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं।
4: अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
8: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
11: देखो इतना बड़ा पेड़।
6: अरे उधर देखो सूखे पत्ते भी हैं।
10: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
5: और ये मशीन क्या है?
4: चलो चलो सर से पूछते हैं।
3: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप।
8: माइक्रोस्कोप।
3: हाँ अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
4: जी सर।
3: हाँ देखो अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के तने को रखा। हाँ

0: आओ देखो, देखो बेटा देखो, इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
1: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
0: हाँ शाबाश।
2: हाँ
3: नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
2: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
0: हाँ आओ आओ।
3: मुझे भी देखना है।
0: देखो क्या दिखाई दिया?
3: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
0: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
4: पाइप?
0: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
1: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
0: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
4: नहीं सर।
0: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र, तुम देखो क्या दिखाई दिया।
1: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
4: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा। इशिता तुम बताओ।
2: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
1: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ।
1: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
2: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है।
3: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
4: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
4: बहुत बढ़िया।
0: अब से एक काम जरूर करना।
4: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना थैंक यू प्लांट,
4: थैंक यू ट्री।
0: शाबाश।
5: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
6: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी
0: हम्म,
1: मुझे 5-7 रुपए दे।

0: दीजिए।
1: पिताजी ने कहा 5-7 रुपए। तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो? बालक बोला,
0: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया, फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए।

0: बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओं, अब एक सूचना सुनिए। सर्वसाधारण व जनता को सूचित किया जाता है कि विद्युत लाइनों के उचित रख रखाव हेतु दिनांक 5 अगस्त 2026 को सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक 11 KV खनियारा फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पटोला, थाथरी, सांबर, लाहड़, TTS और जूहल आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। ये कार्य जनहित में करना बहुत आवश्यक है। सूचना समाप्त हुई।
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य।

0: एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर की 12 बजे हैं और अब समय है सैनिक भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का।

0: सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर हैं फिल्म संगीत के इस सुहाने सफर के साथ और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में गाए इस गीत के साथ।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ?
0: फिल्म का नाम है अमर प्रेम।
1: अब क्या सुनाएं,

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिक भाइयों, किशोर कुमार की आवाज में अभी ये गीत आपने सुना। किशोर कुमार सिर्फ एक पार्श्व गायक ही नहीं थे, बल्कि अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, निर्माता और निर्देशक भी थे। उनकी आवाज़ में ऐसी ताजगी और जादू था कि रोमांस हो, दर्द हो, शरारत हो या जिंदगी का उत्साह, हर एहसास को उन्होंने बखूबी निभाया।

मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथ

0: साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
3: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
4: गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

0: सखियो आप सुन रही हैं अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम सजीव फोन इन सुनो सखी। तो सखियो आज हम आपके साथ भी बातचीत करेंगे और स्टूडियो में हमारे मेहमान आए हैं डॉक्टर दिव्या, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो जैसा कि सखियो आप जानती हैं कि हम 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक स्तनपान दिवस मना रहे हैं, तो आप फ़ोन कॉल के जरिए हमारे साथ जुड़ सकती हैं और जुड़ कर अपने सवालों के जवाब भी डॉक्टर साहब से ले सकती हैं। और सखियो साथ ही साथ आपसे बातचीत करने की एक्साइटमेंट हमें इतनी होती है कि कई बार हम अपना परिचय आपको देना भूल जाते हैं। वैसे तो हमें पता है कि आप आवाज़ के जरिए हमें पहचान ही लेती हैं, लेकिन फिर भी आए दिन नई नई जो सखियां हैं हमारे साथ जुड़ती ही रहती हैं, उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुई है आपकी सखी सुमन। तो स्तनपान के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो सखी थोड़ा सा बता दें कि स्तनपान केवल बच्चे का पहला आहार नहीं है, बल्कि उसका स्वास्थ्य, पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और माँ बच्चे की मजबूत भावनात्मक संबंध की एक महत्वपूर्ण नींव होती है। तो इस विषय में आप अपने सवाल डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारी सखियाँ थोड़ी सी बेताब तो थी बातचीत करने के लिए और फिर से उनकी कॉल आ चुकी है, तो आइए थोड़ी सी बातचीत उनसे करते हैं और जानते हैं कि हमारी सखी क्या सवाल हमारे डॉक्टर साहब से करना चाहती है। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी मैम, नाम बताएं अपना।
1: शिवानी बोल रही हूँ मैं, डाडा सिबा से।
0: डाडा सिबा से शिवानी बोल रही हैं। शिवानी जी, आप अपना सवाल डॉक्टर साहब से करें, वो आपकी बात सुन रही हैं।
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी, आप अपना सवाल डॉक्टर साहब से करें कि आपको स्तनपान के बारे में क्या जानकारी चाहिए या क्या जानना चाहती हैं आप।
1: हेलो,
0: मुझे लग रहा है कि आप तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम अपनी सखियों से कहना चाहते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें, सिग्नल में रहकर ही कॉल करें। तो फिर से हम वापस आते हैं अपने कार्यक्रम में और बातचीत डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आज का दिन जो है स्तनपान दिवस का है, तो विश्व स्तनपान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या रहता है?
2: देखिए, जो भी सुन रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ कि इसका उद्देश्य लोगों में स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, माताओं को सही जानकारी देना और ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना जो हर माँ को सफलतापूर्वक स्तनपान कराने में सहयोग दें, इसके लिए हम ये दिवस मनाते हैं
0: जी। और जैसे कि हर साल की कोई ना कोई थीम रखी जाती है, तो 2026 की स्तनपान दिवस की क्या थीम है?
2: इस साल स्तनपान दिवस की थीम है कि स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहयोगी व्यवस्था का निर्माण करें। इसका संदेश है कि केवल माँ ही नहीं बल्कि परिवार, स्वास्थ्यकर्मी, कार्यस्थल और समाज सभी मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर माँ बिना किसी बाधा के अपने शिशु को स्तनपान करा सके।
0: जी, डॉक्टर साहब एक सखी हमारे साथ जुड़ रही है, देखते हैं क्या कहना चाहती है वो। हेलो
3: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, बताएं आप अपना सवाल क्या आप कहना चाहती हैं डॉक्टर साहब से।
3: मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल बरसात में बच्चों का कैसे लालन पालन करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए
0: जी। स्तनपान के बारे में आप जो जानना चाहती हैं वो डॉक्टर साहब से बताएं, क्योंकि थोड़ा सा हमें पता होता है जब हम माँ बनती हैं तो बहुत सारे सवाल भी होते हैं, और लालन पालन करना तो खैर हर माँ की जिम्मेदारी होती है और माँ को पता होता है कैसे करना है। थोड़ा सा आप अगर जानना चाहती हैं कि स्तनपान के क्या फ़ायदे हैं, किस समय में करवाना चाहिए, किस स्थिति में स्तनपान बच्चे को करवाना चाहिए, उस बारे में आप डॉक्टर साहब से जानकारी ले सकती हैं जी, बताएं तो।

0: हेलो
1: जी जी सुन रहे हैं हम आपको।
0: नमस्कार जी।
1: मैम अपना सवाल करें आप।
0: मैं सवाल तो कर रही हूँ मैम,
1: हाँ जी बताएं आप।
0: ये कैसे करना चाहिए, माँ का भी ध्यान रखना चाहिए और आगे बच्चे का भी
2: जी देखिए बरसातों में बहुत ज़्यादा पानी की बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, वायरल बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो मेरी तरफ से सलाह बरसातों में ये रहेगी कि आप जो पानी पी रहे हैं वो उबाल के पिएं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा सुस्त पॉटी कम कर रहा है या बच्चा पूरी तरह से स्तनपान नहीं ले पा रहा है, तब आपको मुझे ऐसा लगता है कि तब आपको हमारे पास आके परामर्श लेना चाहिए।
1: जी इसके साथ साथ हम अपनी सखी से ये भी कहने चाहते हैं डॉक्टर साहब कि अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें, अपनी थाली में हर वो चीज़ शामिल करें जिसकी एक माँ को
2: ज़रूरत
1: होती
2: है।
1: है। जी तो आपने हमें कॉल की मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।
1: जी डॉक्टर साहब तो फिर से हम अपने विषय की ओर आते हैं। तो स्तनपान दिवस हम मना रहे हैं, अब आप हमें और हमारी सखियों को ये बताएं कि जन्म के बाद शिशु को पहली बार स्तनपान कब करवाना चाहिए।
2: देखिए जन्म के बाद हम अस्पताल में अगर कोई महिला जो है वो डिलीवरी कराती है तो हम उसको विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर हम उसे ब्रेस्ट फीडिंग जो है या स्तनपान जो है वो शुरू करवा देते हैं।
1: तो एक और सखी डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गई है, देखते
2: हाँ जी,
1: हैं क्या कहना चाहते हैं वो। हेलो हेलो,
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार
3: हेलो,
1: मैडम।
3: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार मैडम जी, कैसी हैं आप?
3: ठीक है मैडम जी, आप बताइए आप कैसे हो?
1: बढ़िया हैं, अच्छे हैं। आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल करें।
3: हाँ जी
1: जी बताएं क्या जानना चाहती हैं आप स्तनपान के बारे में।
3: मैडम जी ऐसे है, हमारा ना पोता है 2 साल का
1: जी,
3: वो ना माँ का ही दूध पीता है।
1: हाँ जी
3: डॉक्टर ने उसे मना किया था पर कमजोर बहुत है मैडम जी।
1: जी
2: तो देखिए
3: दूसरा नहीं पीता, गाय वगैरह का
2: आपका जो
3: का, कोई नहीं पीता।
2: आपका जो बच्चा है वो अब अगर 2 साल से ऊपर हो गया है तो आप उसको स्तनपान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके खाने पीने में शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्तनपान ही कराना है, अगर मदर स्तनपान करा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्तनपान के अलावा भी बहुत सारा खाना पीना जो है वो आपको अपने बच्चे को देना पड़ेगा। सिर्फ स्तनपान से 2 साल की उम्र के बच्चे का पोषण नहीं हो पाएगा।
1: जी मैम थोड़ा सा बता दें कि क्या देना चाहिए बच्चे को।
2: आप बच्चे को उबली हुई सब्जियां दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, दाल पानी दे सकते हैं, दाल चावल भी दे सकते हैं, इनफैक्ट आप मैश करके कोई भी फ्रूट उसको खिला सकते हैं
1: जी।
2: तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं
1: जी।
3: वो तो वो खा लेता है लेकिन कमजोर है।
1: तो मैम आपको खाना उसे खिलाती रहिए, धीरे धीरे बच्चे की सेहत जो है बन जाएगी, आप रखें उसका ख्याल। और थोड़ा सा हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं और आपने हमें कॉल की उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।
3: थैंक यू मैडम जी। ओके
1: जी मैम फिर से हम अपने विषय की ओर आते हैं। तो हमें ये बताएं कि जो माँ का पहला पीला दूध जो होता है वो निकलता है उसे अमृत क्यों कहा जाता है।
2: जन्म के बाद निकलने वाला जो गाढ़ा पीला दूध है उसको हम मेडिकल टर्म्स में कोलोस्ट्रम कहते हैं
1: जी,
2: और वो शिशु का पहला प्राकृतिक टीका माना जाता है। उसको कह सकते हैं आपकी वो एक नेचुरल वैक्सीन है बेबी के लिए
1: जी।
2: इसमें एंटीबॉडीज होती हैं स्पेसिफिकली IgGA और ये इसमें WBCs होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाती हैं,
1: यानी कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं।
2: बहुत ज़्यादा इसमें रोग प्रतिरोधक फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को पालन पोषण में उसके लिए जो पर्याप्त मात्रा में जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्तनपान के दूध में जो पहला दूध है वो नहीं फेंकना चाहिए। वो जो गाढ़ा दूध है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है
1: जी। और अब मैम आप हमें ये बताएं कि 6 महीने तक केवल माँ का दूध देने की सलाह ही डॉक्टर साहब हमें क्यों देते हैं।
2: देखिए जीवन के पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही बच्चे के लिए जो है वो पर्याप्त होता है। इसमें बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और पर्याप्त पानी मौजूद होता है
1: जी।
2: इस दौरान शिशु को पानी, शहद, घुट्टी, गाय या भैंस का दूध अथवा कोई अन्य भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती
1: जी।
2: केवल माँ का दूध देने से ही डायरिया, निमोनिया, कुछ कान के इन्फेक्शन हैं जो कि उसका खतरा कम हो जाता है
1: बिल्कुल,
2: तथा बच्चे को जो है वो उसकी उसके जो ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए या विकास के लिए जो भी बेहतर पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में जो है वो दूध में प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से आपको हम रेकमेंड करते हैं कि आप 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराएं
1: जी। बहुत अच्छी जानकारी मैम आप दे रही हैं, और हमारी बहनों को घर बैठे इतनी अच्छी जानकारी मिल जाए तो और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती।

0: सखी कार्यक्रम में हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं और आज हम ये भी कहना चाहते हैं अपनी सखियों से कि लगता है हमारी सखियां कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गई हैं और आज तो वैसे दिन बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब हमारे पास बैठे हैं, गीतों के साथ साथ आपको जानकारियां भी एक ही जगह से मिल रही हैं। तो सखियों आज तो आपकी कॉल बनती है, खैर कोई बात नहीं, कभी कभार होता है कि सखियाँ व्यस्त भी हो जाती हैं, कोई ना आपकी व्यस्तता के चलते हम डॉक्टर साहब से थोड़ा सा सवाल और पूछ लेते हैं क्योंकि आज हमें मौका मिला है जानकारी लेने का, तो जानकारी हमें जितनी मिल जाए उतनी ही कम होती है। तो डॉक्टर साहब अब आप हमें ये बताएं कि क्या स्तनपान करवाने से माँ के स्वास्थ्य को भी लाभ होता है या नहीं?
1: देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हम हमेशा बात करते हैं कि स्तनपान बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण

0: है,
1: जी
0: लेकिन स्तनपान माँ के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: स्तनपान कराने से शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन है
1: जी
0: जिसका जो स्त्राव है वो बढ़ जाता है, जिससे प्रसव के बाद जो गर्भाशय है वो जल्दी से अपनी सामान्य आकार में लौट जाता है, और
1: जी
0: अत्यधिक जो रक्तस्राव है उसका खतरा भी कम होता है।
1: जी
0: और स्तनपान कराने से जो हमारी सखियां हैं
1: जी
0: उनको जो है अतिरिक्त जो कैलोरी भी है वो भी खर्च होती है, जिससे उनको प्रसव के बाद जो है वजन नियंत्रण करने में सहायता मिलती है।
1: जी
0: इसके अलावा माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत मजबूत होती है स्तनपान कराने से। और कई महिलाओं में ऐसा देखा भी गया है कि पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है, जो
1: जी
0: डिलीवरी के बाद डिप्रेशन हो जाता है, वो भी कम हो जाता है
1: जी
0: अगर महिला जो है वो स्तनपान कराती हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हम अपनी सखियों को अपना नंबर बता देते हैं। मुझे लग रहा है कि आज वो भूल गई हैं हमारा नंबर, तो हम उन्हें बता देते हैं। सखियों, हमारे स्टूडियो का नंबर है 01892224391। तो सखियों, जल्दी से डायल करें हमारे स्टूडियो का नंबर, और आपको जो है बहुत सारी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब से मिलने वाली है। हम तो खैर ले ही रहे हैं, और हमारी बातें भी आप तक पहुंच रही हैं। तो सखियो, फिर से हम एक सवाल अपने डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताएं कि माँ के दूध से शिशु को कौन कौन से पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है?
0: देखिए, माँ के दूध में शिशु के लिए आवश्यक जो है वो प्रोटीन, जो हेल्दी फैट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो विटामिंस हैं, मिनरल्स हैं, एक पर्याप्त मात्रा में जो पानी है वो
1: जी
0: शिशु को मिलता है। इसके अलावा जो है वो एंटीबॉडीज़, जैसे मैंने पहले बताया था IgA, और लैक्टोफेरिन और लैक्टोजाइम्स और ऑलिगोसैकेराइड्स, जो कि थोड़ी मेडिकल टर्म्स हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन ये सब जो तत्व हैं ये जो है उससे मिलते हैं, और जो शिशु को जो है बैक्टीरिया और वायरस से बचाने में मदद करते हैं। और यही कारण है कि स्तनपान करने वाले बच्चों को संक्रमण का जो खतरा है वो कम होता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बेहतर विकसित होती
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही बात है। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। और देखो डॉक्टर साहब, आज हमें आपसे कितना फ़ायदा मिल रहा है। वैसे हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और आज हम अपने कामकाज के साथ साथ आपसे जानकारी भी ले रहे हैं। खैर सुन, हमारी सखियां भी रही हैं, लग रहा है आपसे कुछ डर बना हुआ है सखियों को आज। लेकिन फिर भी हम अपनी सखियों से कहना चाहते हैं कि आज आप मौके का फ़ायदा उठा लें। तो डॉक्टर साहब आज आए हुए हैं, तो आप उनसे अपने सवाल करके अपने जवाब भी जान सकती हैं। और डॉक्टर साहब, लग रहा है हमारी बातों का सिलसिला कुछ ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सा विराम देते हैं और आप तक और सखियों तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सखियों, आप सुनते रहिए इस प्यारे से गीत को।

0: सखियो, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहा है, तो एक बार आपको अपने स्टूडियो का नंबर बता दें सखियो। हमारे स्टूडियो का नंबर है 01892224391। तो जल्दी से कॉल करें और डॉक्टर साहब से बात करें, और साथ ही साथ बहुत सारे सवालों का जवाब आपको एक जगह बैठकर मिल सकता है। साथ ही आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और जानकारियाँ भी आपको मिल रही हैं। तो डॉक्टर साहब, जब तक हमारी सखियों की कॉल नहीं आती है, आप हमें ये बताएं कि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है, बहुत सारी माताओं का ये सवाल होता है कि माँ का दूध नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, जो अधिकांश माताएं हैं वो जो शिशु की आवश्यकता के अनुसार जो है वो पर्याप्त मात्रा में दूध बना लेती हैं
0: जी।
1: तो दूध बनने की जो प्रक्रिया है उसका मुख्य रूप से जितना अधिक और सही तरीके से आप बच्चे का स्तनपान करेंगे उतना ही अधिक दूध बनेगा
0: जी।
1: इसे हमारी मेडिकल टर्म में डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। कई बार माँ को ऐसा लगता है कि दूध कम बन रहा है, जबकि वास्तविक समस्या जो है वो बच्चे का सही तरीके से स्तन ना पकड़ पाना
0: जी।
1: या फिर स्तनपान की कम आवृत्ति या गलत तकनीक होती है
0: जी।
1: इसीलिए ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय आप डॉक्टर या किसी से परामर्श ले सकते हैं कि जो स्तनपान है वो सही पोजीशन में कैसे कराएं और कितनी बार कराएं। यूजुअली ऐसा होता है कि हर बच्चा जो है वो 2 घंटे के बाद जो है वो दूध मांग लेता है खुद से, और जितनी बार भी बच्चा दूध मांगता है उतनी बार दूध आपको पिलाना चाहिए बच्चे को।
0: ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा हमें ये भी बता दें कि सर्दी जुकाम या हल्के बुखार में माँ बच्चे को स्तनपान करवा सकती है या नहीं?
1: जी हाँ बिल्कुल, सामान्य सर्दी जुकाम या हल्के बुखार में जो माँ है वो स्तनपान जारी रख सकते हैं। ऐसे समय में माँ के शरीर में बनने वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं वो दूध के माध्यम से बच्चे तक पहुँचती हैं और उसे संक्रमण से बचाने में मदद करती हैं। माँ को बस अच्छी तरह से जो है वो हाथों की सफाई रखनी चाहिए, और यदि खांसी या छींक है तो आप मास्क पहन के स्तनपान करवा सकते हैं। हालांकि यदि माँ को कोई गंभीर संक्रमण है या वो दवाइयाँ ले रही है या स्तनपान के दौरान सुरक्षित नहीं है तो डॉक्टर की सलाह से वो स्तनपान रोक सकती हैं।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, जब आपकी बातचीत चल रही है तो बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आ रहे हैं। अब अगला सवाल हमारे जहन में ये आ गया है कि क्या सिजीरन सी सेक्शन में प्रसव होने पर शीघ्र स्तनपान शुरू किया जा सकता है?
1: बिल्कुल,
0: जी
1: जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, हम 1 घंटे के अंदर जो है हम स्तनपान जो है वो अस्पताल में जारी करवा देते हैं कि 1 घंटे के अंदर, उसको हम जो है वो कहते हैं गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर के अंदर बहुत ज़रूरी है कि जो माँ का पहला दूध है, जो गाढ़ा दूध है, वो बच्चे को मिले और एक पहले ही घंटे में जो है वो शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो सिजेरियन से डिलीवरी हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो।
0: जी, और फिर से एक बार मुझे ध्यान आ गया कि सही तरीके से स्तनपान करवाने की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण रहती है?
1: देखिए, सही पोजीशन और सही तरीके से जो बच्चे को स्तन पकड़ना है, सफल स्तनपान की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब बच्चा सही ढंग से स्तन पकड़ता है तो वह पर्याप्त मात्रा में जो है वो दूध पी लेता है और माँ को दर्द या निपल में चोट होने की संभावना भी कम रहती है। स्तनपान कराते समय ये ध्यान रखें कि शिशु का जो सिर है, गर्दन और शरीर एक ही साथ में ना हो, उसका जो पेट है वो माँ के पेट की ओर हो और वह केवल निपल ही नहीं बल्कि एरियोला, जो निपल के आसपास जो है वो होता है गहरा भाग, उसका भी बड़ा हिस्सा जो है वो अपने मुंह में ले ले। यदि शुरुआत में कोई कठिनाई हो तो डॉक्टर से या आप किसी से सलाह या परामर्श ले सकते हैं।
0: तो मैम, जैसे आप बता रही थी कि अगर माँ को दर्द, सूजन या निपल में समस्या हो तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, डॉक्टर से मिलना चाहिए?
1: कि देखिए, अगर स्तनपान के दौरान दर्द या निपल में कोई दरार होने की सामान्य नहीं है और अक्सर इसका कारण जो है वो जो बच्चे का सही ढंग से स्तन ना पकड़ना होता है, सबसे पहले स्तनपान की जो तकनीक और पोजीशन की जांच करानी चाहिए। यदि स्तनों में अधिक सूजन है या दूध भर जा रहा है या स्तनपान कराने की समस्या हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके स्तन में जो है वो गांठ बन रही है
0: जी,
1: तब आपको डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए आवश्यक मतलब ज़रूर जाना चाहिए
0: जी। अब डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि कैसे हम पहचानें कि शिशु को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है या नहीं?
1: देखिए, यदि बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है तो वह स्तनपान के बाद जो है वो आपको संतुष्ट दिखाई देता है, उसका जो वज़न है वो उम्र के अनुसार

0: रहा होता है और 5वें दिन के बाद वह सामान्यतः 24 घंटे में कम से कम 6 बार पेशाब करता है।
1: जी
0: अगर बच्चे को नियमित वृद्धि, सक्रियता और डॉक्टर द्वारा हर जांच में उचित वजन बढ़ना भी इसी बात के अच्छे संकेत हैं कि उसे पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है। केवल बार बार रोना या बार बार दूध मांगना हमेशा दूध की कमी का संकेत नहीं होता।
1: बिल्कुल। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि हमारी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बहनें जो हैं कामकाजी हैं, अब कामकाजी महिलाएं या माताएं स्तनपान कैसे जारी रख सकती हैं, क्योंकि उन्हें कामकाज पर जाना होता है और बच्चे को दूध पिलाना भी ज़रूरी है, तो कैसे अपने इस काम को वो जारी रखें।
0: देखिए, जो कामकाजी महिलाएं हैं वो सही योजना बनाकर सफलतापूर्वक जो है वो स्तनपान जारी रख सकती हैं।
1: जी
0: जैसे कि आपको मैटरनिटी लीव मिलती है या 6 महीने का अवकाश मिलता है जैसे ही आपका बच्चा होता है,
1: जी
0: तो उसमें आप बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ अपना दूध पिलाते हैं। और
1: बिल्कुल
0: उसके बाद जब आप अपनी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं या आप दोबारा काम अपना शुरुआत कर लेते हैं,
1: जी
0: तब आप जो है वो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, यानी कि जो आप स्तन से दूध निकाल के अपने बच्चे को पिला सकते हैं। और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं
1: जी
0: 24 घंटे के लिए और उसको वापस से गर्म करके जो है वो अपने बच्चे को दे सकते
1: जी इसे
0: हैं।
1: गर्म करने से कोई मतलब खराबी तो नहीं होती।
0: नहीं, अगर आप 24 घंटे के लिए उसको सही टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं होती है।
1: जी अब मैम हमें ये बताएं कि कई बच्चे समय से पहले हो जाते हैं, तो समय से पहले जन्मे शिशुओं के लिए स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है।
0: देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्तनपान में जो दूध है, जो माँ का दूध है, उसमें
1: जी
0: बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो बीमारी से लड़ने वाली जो है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो जो प्री मेच्योर बेबीज़ हैं उनको इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे या वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीने तक उसका स्तनपान कराएंगे, तो आप देखेंगे कि जो पहले समय से पहले जो बच्चे हुए हैं उनकी जो ग्रोथ है उनकी वो
1: जी
0: बेटर होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिला रहे हैं
1: बिल्कुल
0: तो उनका जो निमोनिया का चांस है, उनका जो डायरिया का चांस है, उनको जो वायरल इन्फेक्शंस है, उनको जो ईयर इन्फेक्शंस हैं जो
1: जी
0: कि प्रीमेच्योर बच्चों में ज़्यादा होते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए जो है वो उनको शक्ति मिलती है अगर आप
1: जी
0: एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक हो जाता है।
0: देखिए, अगर आपका बच्चा जो है पूरे दिन में 6 बार सुसु नहीं कर रहा है
1: जी
0: या आपको लग रहा है कि स्तनपान वो अच्छे से नहीं ले पा रहा है या वो पूरा दिन सोया रह रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का जो वज़न है वो कम हो रहा है या वो पॉटी नहीं कर रहा है या
1: जी
0: फिर आपको स्तन में कोई दिक्कत है कि आपके
1: जी
0: स्तन में कोई गांठ हो गई है
1: बिल्कुल
0: या आपका निप्पल जो है उसमें क्रैक आ गया है, आपको दर्द हो रहा है,
1: जी
0: तो तब आपको जो है वो डॉक्टर का परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी और आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सखियो अब समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग दिया है विकास पठानिया ने। तो प्यारे सखियो अब चलने का समय हो गया है और विदा लेते हैं आपसे।

0: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम सुनो सखी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिलीज किए जाएं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण

0: सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच मंगल मिलन जैसी बातचीत समन्वय और संवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान नेताओं ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मंगल मिलन बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने युवा खिलाड़ियों को निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओगावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज चहलुम जुलूस को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में विशेष यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तित किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि दोपहर 2 बजे से अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, रिंग रोड, बीपी मार्ग और उनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात जाम होने की आशंका है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जो कहते हैं कि बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि किशोर कुमार के कौन कौन से रंग पसंद हैं, हमें तो सारे रंग पसंद हैं। एक और श्रोता, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, रुक जाना ओ जाना और फूलों के रंग से, ये उनके फेवरेट हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें अपनी जगह और सलाम इश्क, ये किसी और श्रोता के फेवरेट्स हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ों के जवाब हमारे श्रोताओं ने दिए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भाई कहते हैं मुझको राजा फिल्म का गाना था, बढ़ के बोल बेटा बम बम, मजरूह सुल्तानपुरी ने वो गाना लिखा था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा कि कहानी किस्मत की फिल्म के गाने से आपने कार्यक्रम को शुरू किया था। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिनकी पसंद के तीन गाने, कुछ तो लोग कहेंगे पायल वाली देखना और जीवन से भरी तेरी आँखें। बहुत सारे श्रोताओं की बातें, और किशोर कुमार के बारे में जब लोग अपने जज्बात शेयर करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, तो ये लगता है कि कितना प्यार इस कलाकार से हम सभी को है जो हम फिल्म संगीत को प्यार करते हैं। अब एक गाना आ रहा है जो बिल्कुल बीच से आ रहा है, यानी इस गाने का सबसे ज्यादा फनी पोर्शन हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको दो बातें बतानी है, एक तो फिल्म का नाम और दूसरा गीतकार का नाम। ऐसा हुड़दंगा गाना आखिर किसने लिखा?
1: जय गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम।

धर्मेंद्र, जय जय जय हो जय राजेंद्र। जगत नारायण के छोड़ के संतो

0: पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम। अरे बम बम नाचे किशोर कुमार बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम।
1: जरा सोचिए कि जब गानों की लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती होगी तो कैसे म्यूजिशियंस और कोरस और किशोरदा के साथ के सिंगर सारा तालमेल बैठाते होंगे और इस हुड़दंग के बीच अपने हिस्से की अदाकारी करते होंगे। क्या कमाल है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने तीन पसंदीदा गाने लिखे, मेरे दुख सुख का संसार, तेरे दो नैनन में, लहरों से पूछ लो और हरे कृष्ण, नया दिन नई रात, काफिला और फरेब फिल्म के गाने, बहुत ही अनमोल गाने इन्होंने बताए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के गानों में बहुत सारी मस्ती सुनने को मिलती है, उनकी यूडलिंग कमाल की है और इसीलिए उन्हें सारी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, वो शाम कुछ अजीब थी और कश्ती का खामोश सफर, ये हमारे एक श्रोता के तीन पसंदीदा गाने हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि जिस तरह से वो संजीदा गीत गाते थे, लगभग उसी सुरूर में वो शोख गीतों की कलियाँ चटकाते रहे हैं। आंसू मुस्कान फिल्म का गाना भी हमने आपको सुनवाया, कमर जलालाबादी ने इस गाने को लिखा, जय गोविंदम जय गोपालम, पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। ये जो बोल है कमाल, मतलब आप ये जरा ये सोचिए कि सामान्य गीतकारी में इनकी गुंजाइश कहाँ है, लेकिन किशोर कुमार गानों में जो गुंजाइश निकालते हैं वो अद्भुत है। जैसे कि ये गाना, आज अगर किशोर कुमार होते तो पहली बात आप उनसे क्या कहते बताइए।

0: किथे जाने मेम साहब
1: गर्ल कॉलेज
2: टैक्सी पकड़ी कॉलेज पहुंची सुन लिया लेक्चर राधा पढ़ते पढ़ते याद आ गया किसी से लंच का वादा खिसक के पहुंची रेस्टोरा जान में आई जो
1: हाय हीरो हाय हीरो हाय हीरो
3: हाय बेबी हाय बेबी हाय बेबी
1: हाय
3: हाय हाय हनी मैं तो बोर हो गया।

कदम कदम पर धोती वाले मोटी तोंदों वाले लाले क्रिसमस में जापान चलेंगे नहीं तो इंग्लिश थान चलेंगे।

0: एक श्रोता ये लिखते हैं कि अगर आज किशोर कुमार होते तो उनके सामने बैठकर उनके गाए हुए उनके कुछ गाने सुनती। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म जगत में जो योगदान है उसके लिए हम हमेशा किशोर कुमार के ऋणी रहेंगे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार होते तो हम उनसे एक चतुरनार, पाँच रुपया, बारह आना जैसे गाने सुनते। और इसके अलावा एक और श्रोता ने जो बात कही है कि आज के तमाम हीरोज के गाने वही गा रहे होते और सबसे ज्यादा गाने उनके नाम पर होते आज अगर किशोर कुमार होते। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये कहा है कि बहुत ही अनसुना गीत आपने बजाया। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि अगर आज किशोर कुमार होते तो ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार के सभी गाने वही गा रहे होते। और एक और श्रोता कहते हैं कि हम तो भाई उन्हें साष्टांग प्रणाम करते आज अगर होते। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कि हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी यूडिलिंग हमें सुनवा सिखा दीजिए। और फिर एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार हमारे सामने होते तो हम सैल्यूट करते, चरण स्पर्श करते, कितने लोगों के कितने जज्बात। एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर मरते नहीं, किशोर सबके दिलों में जिंदा हैं। किशोर कुमार को समर्पित ये आज का कार्यक्रम सुरीला सफर सीधे रास्ते पर नहीं जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल वैसा है जैसी किशोर कुमार की मस्ती, जैसे किशोर कुमार का हुड़दंग। यानी ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप रह जाएं हक्का बक्का,
1: और ये भी हक्का। ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का।
0: किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइए।

0: चाहे हम चाहे तुम, कल की है खबर किसको। चाहे हम है चाहे तुम, कल की है खबर किसको। समझे ये हवा मिली ऐसी नजर किसको।
1: बूम धाम बड़ा बड़ा बूम।
0: आई आधी टूटा पत्ता डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ये भी हक्का हक्का पक्का। दुनिया पागल है अलबत्ता।

0: समान
1: जिसका नहीं तू वही तेरे नशे में झूमे, जिसका नहीं तू वही तेरे नशे में झूमे। तन के जो चले जग उसके कदम चूमे।
0: अरे दूर फिटे मुंह
1: चलते जाना, देखे धक्का आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता।

सच मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन। और सोनिया मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन। वो भी काटे मैं भी काटूं, यहाँ सबको है अपनी धुन। अरे भागो बम्बई से कलकत्ता, चलते जाना देके धक्का, आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पका। ए भी हक्का हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का हक्का बक्का, दुनिया पागल।

0: भाई इस गाने को सुनकर क्या कहेंगे आप? मजरूह सुल्तानपुरी के ये बोल हैं, कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और अपने जज्बात का इजहार भी किया है। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि उनके फेवरेट गाने हैं एक लड़की भीगी भागी सी, अजनबी, तुम जाने पहचाने से लगते और कश्ती का खामोश सफर। एक श्रोता और हैं जिन्हें बिंदु रे बिंदु गाना बहुत पसंद है, ये जो गाना हमने आपको सुनवाया इसके बारे में भी कई श्रोताओं ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा किशोर कुमार की गाय नगमे मनोरंजन ही नहीं करते, अपनी आवाज़ के जादू से हम सबके दिलों में जगह बना लेते हैं, ये किसी ने कहा है। वो दुनिया से ज़रूर विदा हो गए मगर उनके गीतों को क्या हम अपने दिल से विदा कर सकते हैं, ये भी एक बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि किशोर दा के सामने मौजूद होना ये किसी भी कला प्रेमी के लिए जीवन का सबसे बड़ा और जादुई पल हो सकता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, लहरों की तरह यादें, मेरा जीवन कुछ काम ना आया, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये तमाम गाने। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि खंडवा में हम उनके घर उनके समाधि स्थल तक गए और इन जगहों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि किशोरदा अगर आज होते तो खंडवा में दूध जलेबी का आनंद ज़रूर लेते। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अपने घर को लेकर उनका अपना एक अलग सपना था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरा एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी हो और पूरे घर में नाव चलाकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएं। आर्किटेक्ट भाग खड़ा हुआ। ये घटना जो है ये बहुत ही दिलचस्प है, पर आज के इस कार्यक्रम में ना जगह है ना सही समय है इसे बताने का। दरअसल उन्होंने उस आर्किटेक्ट से एक तरह का बदला लिया था, उसे सताया था। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और किशोरदा एक सलाह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। अब आप लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर बताइए कि ये सलाह सही है या नहीं है।
1: कुएं में ठंडा जल में नहाने से

देखी दिल्ली की एक लड़की, जिसको देख तबीयत भड़की, मुख से आह निकल गई ठंडी, अंदर अंदर आग सी भड़की।

हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।

0: कोई बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
1: कहने लगा
2: ये मुंह और मसूर की दाल पे, निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे। उसका भाई था बक्सर भारी, उसका

0: लंच ब्रेकफास्ट चाय सोडा वाटर
1: होनोलुलु
0: एक नई दुनिया में पहुंचे वहां थे सब ब्रदर सिस्टर
1: होनोलुलु
2: होनोलुलु होनोलुलु

0: का नाम मिस खंबा। बम्पी बम्पी बम्पी बम्प, कुछ खेल हुआ कुछ मेल हुआ, दिल फेल हुआ हाय हाय रे।
1: बबलू बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू
0: होनोलुलू होनोलुलू।
2: कहां से पहुंचे और कहां चले गए हुनू लुलू, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना परिवार, फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। शैलेंद्र का ये गीत और सलील चौधरी का संगीत, इस गाने के बोल एक

कागज पर लिखकर देखिए और जरा सोचिए कि कैसे लिखे गए होंगे ये गाने और कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की गई होगी। 1956 में आई थी ये फिल्म और बिमल रॉय की ये फिल्म थी और बिमल रॉय निर्मित इस फिल्म में किशोर कुमार का स्पेशल अपीयरेंस था, ये भी हमारे कुछ श्रोताओं में से किसी एक ने कहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा किस तरह से किसी भी गाने को मज़ेदार बना देते हैं कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 50-60 साल पहले लड़कियों के लिए अगर शादी ना करनी होती तो भी करनी पड़ती थी, आज की बात कुछ अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने सारी बात को समअप कर दिया है कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए, इसलिए शादी करना ही बेहतर है, यह उनका विचार है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली कलाकारों में से एक वो माने जाते हैं। एक और श्रोता का कहना यह है कि उनके 3 पसंदीदा गानों को सिलेक्ट करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज आपने किया है, पहले तो उदास गाने बजाए और उसके बाद ऐसे मस्ती भरे गाने लगाए कि एक श्रोता कह रही है कि ऐसे गीत लाए हैं जो आज हमने इनमें से कुछ पहली बार सुने हैं। ठीक है भाई, अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए रुपहले पर्दे पर इस गाने में कौन कौन नजर आते हैं और किशोर कुमार इस गाने में किसकी बैंड बजा रहे हैं।

0: कटरिया ओ संवरिया ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ संवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंगीले सांवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सांवरिया हाय हाय
1: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया।

0: हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट, पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय, मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल में जैसे कटरिया, ओ सवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया,
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया होय होय ओ जाने सारी नगरिया,
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: भाई खत्म हुआ ये हुड़दंगा।

एंड अ हाफ टिकट फिल्म का गाना शैलेंद्र के बोल। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से ना करें क्षेत्रवाद। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसा उड़दंगा कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं फिल्म हाफ टिकट शैलेंद्र जी के बोल हैं। और हाँ, एक चीज़ आपसे कहनी है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने जोश जोश में सखी सहेली वाली या आज शाम के 4 बजे पिटारा वाले कार्यक्रम में जाके अपने कमेंट कर दिए और किशोर कुमार के फेवरेट गाने वहाँ चिपका दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जाके वहाँ पर आपके कमेंट्स देखे, तो मुझे लगा ये कुछ कमेंट्स वहाँ पर क्यों हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इस गाने में किशोर कुमार प्राण की बैंड बजाते हैं, क्या तो शानदार मुकाबला है दोनों महान कलाकारों का इस गाने में। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है और किशोर कुमार ने ही महिला और पुरुष स्वर में भी गाया है और प्राण के स्वर में भी गाया है। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं, लेकिन आज गाने भी ज़्यादा हैं और आप सभी के जज्बात जिस तरह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हौसला बढ़ाने की भी बात है। और ये भी कि किशोर कुमार के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना ज़्यादा है। अब एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पहले हास्य गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था विविध भारती पर, आज के इस कार्यक्रम ने उसकी याद दिला दी है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब वो हास्य गीत गाते थे तो लगता था उन्होंने गाने को किसी धागे की तरह उलझा दिया है और यही धागा उलझाना उनकी विशेषता थी। अब दो गाने बैक टू बैक आएंगे, बल्कि गानों के अंश बैक टू बैक आएंगे, आपको इनकी फिल्मों के नाम बताना है।

रात में मिली एक कद।

भाई बैक टू बैक दो गाने हमने आपको सुनाए और सभी श्रोताओं ने अपने इन बातों के जवाब दिए। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन फिल्म के ये गाने। और चलती का नाम गाड़ी के गाने के बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि क्या तो एक्सप्रेशन है, मधुबाला के लिए गा रहे हैं पर लगा ऐसा जैसे उनके लिए उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो शानदार फिल्म है चलती का नाम गाड़ी। कितने बार आपने देखी है ज़रा बताइएगा तो हम ये अंदाज़ा लगा पाएं कि चलती का नाम गाड़ी हमारे आज सुन रहे श्रोताओं में सबसे ज़्यादा कि बार किसने देखी है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात ये है कि आज जो मैंने इबारत लिखी थी किशोर कुमार के हुड़दंगे गानों के बारे में,

0: अरे भाई अरे भाई
1: अरे भाई निकल के आ घर से आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से देख ले फिर से। अरे भाई निकल

0: अरे कल जो था कल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा। टूटी पुरानी ढपली पे तू कल का मर्सिया मत गा। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से।
1: क्या तो शानदार गाना है, नई दिल्ली फिल्म का ये गाना। भाई आज की इबारत पढ़िए और जल्दी से हिसाब लगाकर बताइए कि आज की इबारत में मैंने जो शब्द लिखे हैं, गानों को जोड़कर जो इबारत बनाई है, उसमें गानों की कुल संख्या कितनी है, जरा हम देखें तो कि आप लोग सही सही अंदाज़ा लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि शब्द शब्द पर गाने समाए हुए हैं। तो कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुल 13 गीत हैं जो कि गलत जवाब है, एक और हैं जिन्होंने 14 गीत लिखा है वो भी गलत जवाब है। तो ज़रा ध्यान से पढ़िए और आज का ये कार्यक्रम, एक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा तो खत्म हो चुका है। तो एक और श्रोता है जिन्हें 16 गाने इस गाने की इबारत से मिले हैं, तो बहुत करीब पहुंच चुकी हैं वो। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई घर से बाहर तो आज नहीं निकल सकते क्योंकि आज हम सुरीला सफ़र सुन रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि हम तो अभी घर पर ही हैं, निकलेंगे तो रौनक देख लेंगे, घनश्याम भाई का नाम भी है इस गाने में। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत है। एक और श्रोता हैं जो देर से जुड़े हैं लेकिन इस कार्यक्रम में उनको बिल्कुल मज़ा ही आ गया है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि बारिश भी ऐसा ही कह रही है कि भाई अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। तो ये किशोर कुमार का जादू है। और अब जो गाना आ रहा है वो किचन में खाना पकाते हुए फिल्माया गया गाना है, और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किचन में खाना पकाते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर आपने जो किया था वो क्या था और कब किया था, क्या पका रहे थे आप?
0: फूंक फूंक कर चूल्हा, अखियन का भयो सत्यानाश, हल्दी देवी बहू है अपनी, श्रीमती मिर्ची अपनी सास। हाँ बोल मेरे दुखिया मन, कब तक ये चूल्हा ये चौका ये झाड़ू ये बर्तन ये आटा बटाटा ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरी की, पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत यो दास। एक रोज

सूखी रोटी और नींबू का अचार। हाय हाय जाने कब छोड़ेगा पीछा हमार। दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास। गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी। गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी। बड़ी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी। बड़ी दुनिया जो देखेगी है बड़ी।

मेरी सलामी को तोप चलेगी, रोज मेरी सलामी को तोप चलेगी। बम बम बम बम बम।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और इस तेजी के साथ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है कि समझ नहीं आ रहा किसने क्या लिखा है। एक श्रोता है जो ये कहते हैं क्यों ना रोटियों का हम पेड़ लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें। वाह भाई वाह वाह वाह वाह। यहाँ मुझे लगता है कि ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि जो शैलेंद्र के बोल कोट किए हैं इन्होंने, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें, ये किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा गाना है? जिन्होंने पोस्ट किया वो प्लीज़ मत बताइएगा। एक और श्रोताएं जो कहती हैं कि 19 गाने हैं आज की इस इबारत में, एक श्रोताएं जो कहती हैं कि आज की इबारत में 20 गाने हैं, एक श्रोता नाराज हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट आते ही अपने विचार व्यक्त करता हूं, पर आपको अपने सवालों में ही दिलचस्पी रहती है, शायद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हमने गलती कर दी है। भाई आपका कमेंट दिखानी, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करते हैं। और देखिए कि लगातार कमेंट्स पढ़ रहे हैं गानों के बीच में, ये कमेंट दिखा और फौरन पढ़ा। एक श्रोता है जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया और दूध की बजाय चावल पता नहीं क्या उन्होंने जोड़ दिया और हलवे की बैंड बज गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही हैं कि उन्होंने चाय में नमक डाल दी थी और मेहमानों को परोस भी दी थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही हैं कि कुछ कुकर में खिचड़ी बन रही थी, गैस चूल्हे पर रखकर भूल गया, उसका ढक्कन उड़ा, खिचड़ी जाकर दीवारों और छत पर लग गई, हे भगवान। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि पहली बार जब आटा गूंधा तो ढेर सारा पानी डाल दिया था और एक ही बार में वो गीला हो गया था। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इस गाने के साथ मेरा भी एक किस्सा है। वैसे तो कभी कभी पापा छुट्टी के दिन खाना बना देते थे और उस दिन यही गाना गाते थे, एक रोज़ हमारी भी दाल गलेगी। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमारी दाल तो गल गई है और अब हम रोटी पका रहे हैं, वही वाह। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा

है कि भाई 18 गाने आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस इबारत में हैं। और ये जो किचन के ब्लंडर्स हैं, ये पढ़कर बड़ा ही मज़ा आ गया। बल्कि एक और मज़ेदार किस्सा ये हुआ है कि के मुंगोछो घनश्याम जी, इस तरह की जो पंक्ति है अरे भाई निकल क्या घर से वाले गाने में, तो बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका नाम घनश्याम है, उनको बड़ा मज़ा आ गया आज के कार्यक्रम में इस गाने की इस लाइन को सुनकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किशोर का एक और हुड़दंगा गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम आप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे हुड़दंगे गाने जो हमने बजाए, उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा गाना था, और अगर कोई भयंकर हुड़दंगा गाना हमने मिस कर दिया तो वो भी बता दीजिए।

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए। एक श्रोता लिखती हैं कि भाई जरूरत है एक श्रीमती की, ये गाना नहीं बजाया गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं प्रिय प्राणेश्वरी को मिस कर रही हूँ, इसके अलावा झुमरू गाना नहीं बजाया गया। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, पर एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें रोटी तोड़ें रोटी आम खा लें, ये गाना मुसाफिर फिल्म के गाने की पंक्तियां हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा ये गाना है जिसमें इतनी सुंदर पंक्तियां आती हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला, अम्मी को आई हंसी हंस के वो कहने लगी लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति, शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये ज़रूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नज़र आए थे, और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है, और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी।

और कार्यक्रम का आखिरी गाना। फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं, और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी।

ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना। खादिम हूँ मैं पुराना, रखता जो कुछ नजर है।

दुश्मन जिसे सताए जिसको लगा के जाए जाके नजर मिलाए धोखा कभी न खाए बूढ़ा हो या हो बच्चा।

0: भाई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हुआ। हमने किशोर कुमार को सेलिब्रेट किया और धमाधम सेलिब्रेट किया। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया और किशोर कुमार की याद को हम नमन करते हैं। किशोर दास जिंदाबाद।
1: राम राम सियाराम सलाम वालेकुम प्यार करो चुप चुप रुद्रिय चुक चुक।

त्रिवेणी में आपका स्वागत है। तो आज बातें माँ की। जैसे ही माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे सामने एक ममतामयी मूरत आ जाती है, एक ऐसा रिश्ता जिसको हमने भगवान का दर्जा दिया है, इतने ऊपर स्थापित कर दिया है कि उनसे कभी इंसानों वाली गलतियों की अपेक्षा ही नहीं की जाती। माँ यानी जैसे बच्चे के हंसने, रोने, खाने पीने, डरने, सोने जागने और पूरे दिलो दिमाग का पता होना चाहिए। माँ कभी इस मामले में गलत हो ही नहीं सकती, और अगर वो कभी बच्चे की भावना को ना समझ पाए तो मानो कहर ही टूट पड़ता है, क्योंकि माँ को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, है ना?

माओं पर बच्चों को पूरी तरह जानने का ऐसा दबाव होता है कि माँ खुद को माँ कम बच्चों के पीछे लगा सीआईडी एजेंट ज्यादा समझने लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, बच्चे की हर गलती या आहत भावनाओं के लिए माँ ही जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। वहीं अगर बच्चा कोई बात न मानता दिखे तो भी अधिकांश मामलों में माँ ही उसे बिगाड़ने की जिम्मेदार समझी जाती है। इस दबाव का नतीजा ही है कि माएं बच्चों की हर गतिविधि पर किसी जासूस की तरह नजर रखना अपना धर्म समझती हैं। फिर बच्चे के दोस्तों के नाम हो, उनके घर का पता हो या बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट, बच्चे के टिफिन, बोतल, बैग, कपड़े और उनकी पूरी जिंदगी ही माँ की नजरों के स्कैनर से होकर गुजरती है। एक उम्र तक तो ये सब ठीक भी लगता है, लेकिन जब बच्चे युवा हों तब यही बातें उन्हें परेशान करने लगती हैं। इस तरह बच्चों की जिंदगी में मंडराते

बच्चों के जिंदगी में पेरेंट्स की ज्यादा दखल बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करती है। लेकिन यहाँ समझना ये है कि माओं को हर बात पता होने के दबाव ही अक्सर उन्हें इस तरह दखल देते रहने के लिए प्रेरित करता है। पर सामाजिक ढांचे में इन दिनों बदलाव भी हुआ है। कामकाजी जोड़े होने के कारण इन दिनों घर के पुरुष भी हर काम में हाथ बटाते हैं और कहीं कहीं तो पिता भी अब सामाजिक रूप से तय माँ की भूमिका में अपना हिस्सा निभाते हैं। वो बच्चों को नहलाना, डायपर बदलना, सफाई करना, घुमाना, खिलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन बना देना जैसे कई काम उनके लिए करते हैं। कहना ही होगा कि इस तरह से परिवार में अभिभावकों का आपस में मिलकर काम करना दोनों को ही बच्चों के करीब लाता है। बच्चा भी परिवार में अपने माता पिता को एक टीम की तरह काम करते देख दोनों के साथ समान रूप से जुड़ता है और पिता से केवल डरने या उनका सम्मान करते रहने की बजाय गले लगने और अपने दिल की बात कहने का हौसला भी पाता है। कहीं ना कहीं पिता में भी अब उन्हें माँ की तरह की सहजता मिल रही है।

घर के सदस्य एक टीम बन जाएं, तो जीवन का खेल भी आसान हो जाता है। इसी संदेश के साथ दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम

0: मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। तरफ ऑपोजिशन करके जिसको जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
4: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया।

0: किया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
1: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसके तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
2: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
3: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड

0: अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले फरेब फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल अनिल बिस्वास की तर्ज है।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के साथ आशा भोसले।

0: चल के तुझे।
1: एक रास फिल्म का गीत सुना आपने और अब दूर गगन की छाओ में फिल्म का गाना।

और कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मन मंदिर फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गीत राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: ये था आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज 120वीं जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, मंत्रिमंडल के सदस्यों, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निर्माण व संरक्षण में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का अतुलनीय योगदान रहा है।
3: परमार जी की 120वीं जयंती पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को याद करते हैं इस उद्देश्य के साथ कि हिमाचल बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, हिमाचल को बिचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इस हर वर्ष ये जयंती मनाई जाती है।
2: इस बीच विधानसभा परिसर में आयोजित हो रहे श्रद्धांजलि समारोह में भी मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने समारोह की अध्यक्षता की और डॉक्टर वाई एस परमार द्वारा हिमाचल के लिए दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार के आदर्श व उनके दिखाए मार्ग से प्रेरणा लेकर प्रदेश के विकास व जन कल्याण के लिए कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
3: परमार साहब की जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को और जो परमार साहब का सपना था कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसको हम अपने योजनाओं में डालकर धरातल में लाकर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार गांव में CBSE योजना लेके आई, दूध का MSP लेके आई, गांव में जो वन लगाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लेके आई, गांव में बैठे हुए व्यक्ति के आय को बढ़ाने के लिए योजना लेके आई, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला की एक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में आयोजित की गई। बैठक में आगामी संगठनात्मक व जन जागरण कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा कर उनकी रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश भाजपा सचिव व जिला प्रभारी सुमित शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय

0: जनता पार्टी आगामी दिनों में प्रदेश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कलश यात्रा, भाजपा का विशाल धरना प्रदर्शन, 10 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा अभियान और 8 अगस्त को शिमला में विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तार से चर्चा कर सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। सुमित शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के लगभग 4 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश की जनता पूरी तरह निराश हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की विफलताओं को घर घर तक पहुंचाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की एक बैठक आज शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित होगी। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी व विधायक रणधीर शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में आगामी विधानसभा के मॉनसून सत्र सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांगड़ा जिला की धौलाधार श्रृंखलाओं की गोद में बसे विश्व प्रसिद्ध त्रियुंड ट्रैक को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में वन विभाग ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। धर्मशाला के डीएफओ अमित शर्मा ने बताया कि ट्रैक पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जबकि प्राकृतिक स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में मार्च तक 70,667 पर्यटकों ने त्रियुंड ट्रैक का भ्रमण किया। अमित शर्मा ने बताया कि त्रियुंड एक संवेदनशील प्राकृतिक स्थल है, इसलिए यहां किसी प्रकार का भारी कंक्रीट निर्माण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने त्रियुंड के लिए विस्तृत डीपीआर और दीर्घकालिक विकास योजना तैयार की है। इसके तहत मॉनसून समाप्त होने के बाद सितंबर में लाका से त्रियुंड तक पेयजल पहुंचाने की परियोजना शुरू करने का लक्ष्य है।
1: त्रियुंड जो हमारा ट्रैक है बहुत ही, इट्स वन ऑफ द फेमस ट्रैक इन एंटायर हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे काफ़ी लोग फॉरेन नेशनल्स, इंडियन नेशनल्स इसको विजिट करते हैं एवरी ईयर। पिछले एक वर्ष में 25-26 में हमारे पास मार्च तक का जो डाटा है उसमें 70,667 लोगों ने यहाँ विजिट किया है। 75,76,912 रुपये इसमें एकत्रित किए थे टिकटिंग के माध्यम से। ये एक नेचुरल लैंडस्केप है, यहाँ ज़्यादा ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना इस ट्रैक पे संभव नहीं है, और तो हम नेचुरल इसको रखना चाह रहे हैं। हमने पूरा एक डीपीआर तैयार करी हुई है ट्रैक को डेवलप करने के लिए, और आने वाले समय में मॉनसून के बाद हम पानी भी इलाका से लाने की हमारी कोशिश है, जिसमें हमें स्टेट इको टूरिज्म सोसाइटी ने 15 लाख रुपया हमें एज ए लोन उन्होंने दिया है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद अब प्रस्तुत है मंडी जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक है मुनीश सूद, वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का।
3: प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हिमाचल पथ परिवहन निगम की प्रथम दर्शन योजना और हिम बस पास सुविधा आमजन के लिए लाभकारी साबित हो रही है। प्रथम दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को सीधी बस सेवाओं से जोड़कर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाया गया है। वहीं HRTC के राजस्व में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। मंडी जिला में करसोग डिपो से इस योजना के अंतर्गत माँ शिकारी मंदिर के लिए प्रतिदिन विशेष बस सेवा संचालित की जा रही है। इस सेवा से स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी सुविधा मिली है। योजना शुरू होने के बाद करसोग डिपो के राजस्व में लगभग 100 रुपये प्रति किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पात्र यात्रियों को रियायती व निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हिम बस पास योजना के तहत करसोग क्षेत्र में अब तक 9,166 बस पास जारी किए जा चुके हैं। इनमें 1,581 सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी, 6,350 महिला यात्री तथा 969 दिव्यांगजन शामिल हैं। पिछले दिनों जिला के उपमंडल सरकाघाट में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना फेज 4 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए प्रस्तावित बस रूटों के निर्धारण को लेकर SDM कार्यालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी राजेंद्र कुमार गौतम ने की, जिसमें गोपालपुर विकासखंड के नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद योजना के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले संभावित बस रूटों का चयन किया गया। रूट

0: निर्धारित करते समय विशेष रूप से उन ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई जहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधा सीमित है या उपलब्ध नहीं है। एसडीएम राजेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि बस रूटों का निर्धारण स्थानीय आवश्यकताओं और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर किया गया है। इसके अलावा यदि कोई क्षेत्र प्रारंभिक सूची में शामिल होने से रह गया है तो एचआरटीसी के साथ समन्वय कर उसे आगामी चरणों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। जिले में गत दिनों समेकित बाल विकास परियोजना धर्मपुर के अंतर्गत बरोटी व मंडप वृत्त की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में दोनों वृत्तों के 41 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और योजना के नवीनतम दिशा निर्देशों, ऑनलाइन प्रक्रियाओं तथा डिजिटल सत्यापन प्रणाली की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान प्रतिभागियों को एनपीसीआई मैपिंग, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से डिजिटल सत्यापन तथा PMMVY पोर्टल के व्यावहारिक उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही प्रशिक्षण सामग्री और वीडियो तक आसान पहुंच के लिए QR कोड उपलब्ध करवाए गए। जिला उद्योग केंद्र मंडी द्वारा स्मार्ट MSME के तहत गत दिनों सुंदरनगर में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 50 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमियों को सरकारी योजनाओं, डिजिटल सेवाओं तथा विपणन के नए अवसरों से जोड़ना था। इसके अलावा स्मार्ट MSME व रैंप कार्यक्रम के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता, क्षमता संवर्धन तथा व्यवसाय विस्तार से जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य पर जिला के करसोग उपमंडल के राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेरी बंगलो में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा प्रकृति के संरक्षण का संदेश देना रहा। प्रदेश में मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित पालना योजना कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी है। योजना के तहत संचालित आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्र छोटे बच्चों को सुरक्षित वातावरण, पौष्टिक आहार और प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के साथ साथ महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा व अन्य कार्यों से निश्चिंत होकर जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। इसी के साथ मंडी जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: राजकुमारी चंदेल से अभी आप सुन रहे थे मंडी जिला की चिट्ठी, जिसके

0: साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: इतना प्यारा गीत, सावन तो आ गया है और खैर सावन का इंतजार हम सभी को रहता भी है। और हमें लगा कि आरती का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुलाबी हो गया था, सावन की फुहारों से बहुत ही खुश नजर आ रही थी। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है आरती कि हम प्रकृति से बहुत खुश होते हैं, प्रकृति के माहौल में रमे होते हैं, लेकिन अचानक कई बार हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जिंदगी में हमने सुन ली हैं या कुछ ऐसी बातों से घिर गए हैं जो सच नहीं होती हैं, झूठ के करीब होती हैं, जिन्हें हम अफवाह का नाम भी दे सकते हैं, तो और हम दुखी भी हो जाते हैं
1: बिल्कुल
0: कि अरे हम किस दुनिया में फंस गए, या ये क्या हम सुन रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में,
1: बिल्कुल,
0: तो हमारा मन थोड़ा सा उद्विलित हो जाता है।
1: बिल्कुल। और वैसे भी ये जो युग है वो संचार का युग है, और मोबाइल फ़ोन हो या सोशल मीडिया हो, और इससे कोई भी जानकारी जो है वो छुपी नहीं रहती है, और पल भर में कोई भी जानकारी हो, चाहे वो सच हो या झूठ हो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। और लेकिन इस आधुनिक सुविधा के साथ में एक बड़ी समस्या भी है कि हम जो अफवाहें उससे बच नहीं पाते हैं। हमें जितनी सुविधा मिलती है फ़ोन के ज़रिए, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुँच बना सकते हैं, लेकिन वो पहुँच कभी कभी जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि उससे अफवाहें फैलने का डर रहता है, और अफवाहें जब फैलती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, कुछ कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं या उस तरह की चीज़ें होती हैं,
0: बिल्कुल सही कहा
1: ऐसे हादसे हो जाते हैं
0: कि बिना सत्यता के जो फैलाई गई झूठी या भ्रामक जो जानकारियां हैं वो केवल न केवल लोगों को भ्रमित करती हैं, बल्कि कई बार हमारे मन में भय, तनाव, हिंसा और अविश्वास का कारण भी बन जाती है। और अफवाहें जो है अक्सर जो है आधी अधूरी जानकारी कहें या झूठे संदेश हैं या संपादित तस्वीरें हैं या पुराने वीडियो या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में फैलाई जाती है।
1: बिल्कुल। और इस तरह से उनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो पहली नज़र में हमें एकदम सच लगती हैं, और लोग बिना जांच पड़ताल किए इन्हें आगे भेज देते हैं, और देखते ही देखते एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो समाज की एकता और आपसी विश्वास को भी कमज़ोर करती हैं।
0: बिल्कुल। कई बार किसी व्यक्ति की बात करें, समुदाय की या संस्था के बारे में जब गलत जानकारी फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था का या आर्थिक मामलों से जुड़ी अफवाहें लोगों में घबराहट और गलत निर्णयों को जन्म भी दे सकती हैं। आरती,
1: बिल्कुल। और इस डिजिटल युग में देश के हर नागरिक की अपनी खुद की एक जिम्मेदारी है कि वो एक जागरूक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता बने। कोई भी संदेश, वीडियो या समाचार मिलने पर उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय उसके स्रोत की विश्वसनीयता को अच्छी तरीके से आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसको आप आगे भेजें।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर किसी समाचार की पुष्टि विश्वसनीय समाचार माध्यमों से या संबंधित सरकारी विभागों से नहीं होती है तो उसे आगे नहीं भेजना है। हम क्या करते हैं, तुरंत आगे भेज देते हैं। हमें लगता है पता नहीं हम क्या भेज कर क्या संदेश दे देंगे या क्या क्रांति ऐसी बना देंगे, लेकिन सनसनी फैलाने वाले जो शीर्षक हैं, भावनात्मक संदेश हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं और विश्वसनीय समाचार स्रोत हैं उनसे हम पुष्टि करें कि भाई ये जो न्यूज़ है, ये जो समाचार है, ये जो संदेश हमें भेजा गया है वो सही है भी या नहीं।
1: बिल्कुल। और क्योंकि ये भ्रामक जो खबरें होती हैं उससे समाज में डर हो फैलता है, अराजकता, और साथ ही कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि किस तरह से हम उस जगह को शांति उसको बना के रखें। तो ज़रूरी है कि हम इस तरीके की अफवाहों से बचें और फैलाने का काम ना करें उनको।
0: हाँ, आपको पता है इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। हम इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हमें पसंद भी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने आसपास बना के रखें, लेकिन इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत पैदा हो जाती है लोगों के मनों में। इससे हमें बहुत बचना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी सावधानी जो है समाज को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। इसलिए न तो खुद अफवाहों पर विश्वास करें और न ही इन्हें फैलाने का हम खुद माध्यम बने। और जो भ्रामक खबरें हमें मिलती हैं उससे समाज में डर और अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है। कई बार ऐसी बातें कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर देती हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे जो साथी

0: वो भी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में। तो हम एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाले अफवाहें फैलती नहीं है, अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उसके अनुसार ही आचरण करना अपेक्षित है और ऐसी अफवाहों से बचना ही श्रेयकर है।
1: बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी खबर या संदेश को आगे भेजने से पहले उनकी विश्वसनीय स्रोत की जांच जरूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अफवाहें अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा कर देती हैं। इनसे दूर रहकर मानसिक शांति बनी रह सकती है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से हमें बचना चाहिए। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है जिसके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है।
0: बिल्कुल, एक हमारे साथी जो कहते हैं कि सावधान रहिए और किसी भी संदेश या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। सरकारी वेबसाइट्स या भरोसेमंद समाचार चैनल की जानकारी की सत्यता परखें और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा ना करें या डरें नहीं। जिस खबर के सच होने का पक्का सबूत हो और ना हो उसको आगे ना भेजें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सावधान रहने लगते हैं तो स्थिति जटिल हो जाती है। ज्यादा सावधानी रखना आपको परेशान भी करता है और आपको चिंता भी देता है। लेकिन हाँ, अफवाहों से रहें सावधान। भाई, सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाली अफवाहें फैलती नहीं, अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपने बौद्धिक क्षमता के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे साथी जो कहते हैं कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जो अफवाहें हैं वो अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा करती हैं और एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से बचना चाहिए और गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानून अपराध है जिसके लिए जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं ने अपनी राय हम तक पहुंचाई और वाकई अफवाहें फैलाना बहुत ही बड़ा एक अपराध है जो समाज में गलत माहौल पैदा कर देता है।
0: जी
1: चलिए, हम तो गीत संगीत के जरिए एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं इस
0: हाँ, बिल्कुल
1: कार्यक्रम में।
0: गीत सुनते हैं।

0: लगता है आरती आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो। सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिका सदानी जी की।
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी एक महिला की बात तो जरूर करते हैं लेकिन इस एक महिला के बहाने हम उन हजारों महिलाओं को सैल्यूट भी कर लेते हैं जो इस तरह से अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेटी को स्किन की बीमारी से बचाने के लिए, यानी अपनी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मल्लिका सदानी की, एक सैन्य परिवार में थी वो पली बड़ी। मल्लिका का जो जीवन था आरती अनुशासन से बंधा हुआ था और उनके पिता जो एक मेजर जनरल थे उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया और गृहिणी माँ ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी
1: जी। और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो एमबीए करने मुंबई चली गई और एमबीए करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
0: हाँ, लेकिन जब उनकी बेटी एक साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था
1: जी। और क्योंकि लंदन से आने

0: वाले को ढूंढना, दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी, उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ, तब उसे सांस की बीमारी होने के कारण कई उत्पादों का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी।
1: हाँ।
0: और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कई सारे उत्पादों को परख कर देखा जिनमें खुशबू ना आती हो, जिनकी खुशबू उनकी बेटी को के उनकी बीमारी को और ना बढ़ाए।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ
0: जी।
1: और हालांकि उन्हें ऐसे उत्पाद नहीं मिले, लेकिन उन्होंने खुद नए उत्पाद बनाने का निर्णय ले लिया ऐसी स्थिति में, और ऐसे उत्पाद जिनमें हानिकारक रसायन नहीं हो और जो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हो। इसके लिए उन्होंने लगातार शोध करना शुरू किया, साथ ही इस शोध कार्य के लिए वो दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों से भी मिली।
0: बिल्कुल। और लगातार शोध और वैज्ञानिकों के सुझाव को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल का समय लग गया, और साल 2016 में उन्होंने अपने पति के साथ स्किन केयर ब्रांड की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा था अमीशी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर द मॉम्स कंपनी कर दिया गया। और उनकी कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन ना हो,
1: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना।
0: जी बिल्कुल। और ताकि बच्चों की जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है, जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है, वो प्रभावित ना हो। मल्लिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख हैं टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर, और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
1: क्या बात है। और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था, वो आसान नहीं था आरती, इतना मुश्किल काम था। और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन इन सब के बाद भी सफल महिला उद्यमी का खिताब उनके नाम हुआ, और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है, और आज वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।
0: बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी, आज वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है।
1: सोचिए कितने बच्चों को इससे लाभ हुआ है ना, कितनी माताएं अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा पाएंगी जिस बीमारी से इन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा शोध किया और इतनी बड़ी सफल उद्यमी बन गई। चलिए गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया, और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
2: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की,
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो आरती तुम चौंक गई ना।
0: हाँ। क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
1: हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे हमें बजाना बहुत जरूरी था, और हमने सोचा पहले इसे बजा लेते हैं और अब सुनते हैं गीत।
0: जी।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारी सभी सखियों और सखाओं का एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
0: अरे, बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
1: वो बचपन का जमाना जब हम शरारतें किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज तो आपने एक इतना खास विषय हमारे श्रोताओं के लिए चुना है कि हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, है ना।
1: और हमारे साथी भी तो कितने अपने बचपन के जो किस्से हैं वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साझा करें उन्होंने बहुत
0: तो
1: सारे।
0: आपने उनसे अनुरोध किया था ना कि भाई आप इस पर निबंध नहीं लिखेंगे बल्कि ये बताएंगे कि बचपन में हम क्या शरारतें किया करते थे या हमारे बच्चों ने क्या क्या शरारतें की। तो उन्होंने लिखकर आपको दिया है, पढ़ते हैं हम क्या हमारे श्रोता चाहते हैं, आज क्या लिखे हैं उन्होंने हमारे लिए।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बचपन की यादगार शरारत। भाई, बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और हम उस बेगानेपन में स्वयं को देख भी कहाँ पाते हैं। और वैसे भी कोई भी अभिनेता या और अपने अभिनय को अभिनय करते समय देख भी पाता है भला। अरे, उस काल में ही नहीं अपितु हर काल में अभिनेता के अभिनय को दूसरे ही देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब अपने बाल बच्चों के अभिनय को देखते हैं तो उसमें स्वयं को ढूंढते हैं। ये तो सही कह रहे हैं वो।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अब आप सबको अपने बचपन की दिलचस्प और मज़ेदार यादगार किस्सा बताता हूँ। हुआ यूँ कि मैं स्कूल जाने से बहुत कतराता था। बड़ी मुश्किल से माँ हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ भी आती तो स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जल्दी से घंटी बजे और छुट्टी हो, बस इस बात का इंतज़ार रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई, समय जैसे ठहर ही गया, घंटी बजे ना छुट्टी हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं छुट्टी होने से पहले ही बस्ता लेकर चुपके चुपके कक्षा से बाहर निकलता हूँ और स्कूल की घंटी और लकड़ी की हथौड़ी जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और अपने स्कूल के बैग में रख के घर ले आया और अपने घर पहुंचकर घंटी निकालकर बजाने लगा। मेरी माँ ने ये सब देखा तो हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है, ये स्कूल की घंटी घर क्यों ले आए। मैंने बताया कि स्कूल की घंटी मतलब छुट्टी हो ही नहीं रही थी, स्कूल वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बेकार जमीन पर पड़ी थी तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही माँ ने घंटी की तरह मुझे भी बजाना शुरू कर दिया और घंटी को वापस स्कूल छोड़कर माँ मेरे द्वारा की गई शरारत के लिए अध्यापकों से क्षमा।

0: मांग कर घर को लौट आई।
1: भाई बहुत बढ़िया से शरारत है तो। और हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बचपन में तो हमने काफी शरारतें की हैं, किस किस के बारे में बताऊं। पर एक बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई, और हम लोगों को बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस क्या था, हम लोग दादाजी को परेशान करना हमने शुरू कर दिया। और तो और मैंने अपनी बुआ का एक दुपट्टा लिया और अपने गले में बांध कर दादाजी को डराने लगी कि अगर मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले जाएंगे तो मैं उससे अपने आप को बांध लूंगी। हालांकि दुपट्टा बहुत ढीला था, ढीला ही बांधता, पर दादाजी तो डर गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगा। फिर जब मम्मी आई तो मेरे दादाजी बोले, लो संभालो अपने बदमाश बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन दादाजी हम लोगों को फिल्म दिखाने ले गए।
0: और वही एक श्रोता लिखते हैं कि साल 1962 के आसपास की बात है, हमारा सुथारी का काम वर्कशॉप हुआ करता था। सभी काम हाथ से मतलब औजारों से किया जाते थे। शीशम की लकड़ी को काटते वक्त जो भूसा यानी पाउडर निकलता था, पाउडर निकलता था, वो चाय की पत्ती जैसा हुबहू लगता था। हम बच्चे उसे इकट्ठा करके न्यूज़पेपर काटकर भूसे से भरा मस्त पैकिंग जैसे दुकानदार करता है वैसा बना लेते थे। शाम ढलने या अंधेरा होने के समय घर नज़दीक के रास्ते पर डाल दिया करते थे। उस रास्ते से जो लोग जाते थे उनकी नज़र उस पर पड़ती तो वो चुपके से अपनी थैली में डालकर चल देते थे। तब उन्हें देखकर हमारी खुशी और हंसी का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद हमारी शरारत की शिकायत पिताजी तक पहुंच गई। उन्होंने हम सभी बच्चों को साथ बुलाकर कड़ी डांट के साथ जो धुलाई की वो आज भी याद है। भाई पहले तो माता पिता धुलाई कर दिया
1: बिल्कुल आराम से
0: और बच्चे भी खा लिया करते थे। हमने भी
1: बहुत
0: धुलाई हुई है हमारी भी। लेकिन मुझे याद है कि थोड़े समय बाद हम फिर से बच्चे बन जाते थे, कभी भी नाराज नहीं हुए, ना हमें माता पिता पर कभी गुस्सा आया।
1: बिल्कुल। अब एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की यादगार शरारत मैं भी बता ही देता हूँ। बचपन में मैं और मेरे घर के पास एक चाचा हम उम्र हुआ करते थे। मैंने अपने छोटे भाई के साथ प्लान बनाया कि आज रात में जब चाचा सो जाएंगे तो उनकी चारपाई के पास भूत बनकर जाएंगे और उनको डराएंगे। गर्मी के दिनों में हम अक्सर घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। रात को मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपने चेहरे पर लाइट जलाकर आऊंगा, तुम उनकी चारपाई हिला देना, नीचे से लगेगा कि कोई भूत आ गया। लेकिन जैसे ही मैं दूर से सिर्फ अपने चेहरे पर लाइट जलाकर चाचा की चारपाई के पास जाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप बैठा रहा। मैं जब पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुमने चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया था, लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था। उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और सच में बचपन की घटना मुझे अभी तक याद है।
0: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं डर जाते हैं ना। हाँ एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि हल्की फुल्की बातें, बचपन की यादगार बात ये है कि मैंने एक शर्त की थी बचपन में जो बाद में मुझे और मेरे माता पिता दोनों को ही तकलीफ दे गई। एक जो मेरी गलती नहीं थी, एक जिसमें मेरी गलती थी, तो मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मेरी गलती ये थी, जिसमें मेरी गलती नहीं थी, वही दोनों बातें बता रही है। उसमें ये हुआ कि मेरे पेट में अचानक से सीटी बजते बजते सीटी घुसे पेट के अंदर, लेकिन मतलब इस तरह का कोई उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। और एक जिसमें मेरी गलती थी कि मेरे ड्रेस में कुछ मोती लगे हुए थे, तो एक दिन हमें कहीं जाना था, ड्रेस पहनी हुई थी, मम्मी तैयार हो रही थी और मैंने क्या किया कि ड्रेस की मोती को निकालकर नाक में घुसा लिया और उसके कारण कई प्रकार के मतलब दिक्कत हो गई। नाक के अंदर जाकर वो फंस गया, मोती अटक गया कहीं और नाक के द्वारा हमें पता चला कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उस समय मेरे माता पिता बहुत डर गए और आज भी मुझे ये बात याद आती है। बच्चे इस तरह का करते थे, पहले पेंसिल घुसा लेते थे, बर्तन नाक के अंदर डाल लेते थे, है ना, सिक्का भी कई बार गिटक जाते थे बच्चे, का 50 पैसे का सिक्का या चवन्नी जिसे हम 25 पैसे कहते थे ना, कई बच्चे निगल गए। ऐसी स्थितियां भी कई बार स्कूल्स में टीचर्स को फेस करनी पड़ती है।
1: तो ये कभी कभी शरारतें बहुत भारी पड़ जाती
0: हैं। हाँ शरारतें भी और कई बार नासमझी में भी बच्चा कर देता है और उसका भुगतान माता पिता को करना पड़ता है।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन की वो बात याद आती है जब हम किसी के बागान और अहाते में फूल फल तोड़ लेते थे। सरकारी जो क्वार्टर होते थे उसमें बहुत सारे बगीचे में फूल लगे होते थे। हम लोग किसी के घर जन्मदिन में गए, सब लोग भीतर में कुछ तैयारी चल कर रहे थे और हम लोगों ने भर भर के फूल तोड़ लिए। अब उन फूलों को कैसे लेकर जाएं, उसे हम लोगों ने क्यारी में ही छुपा दिया। चलने के समय जब हमारे जो गार्जियन जो साथ में थे तो हम उसको नहीं ले पाए। दूसरे दिन बाबूजी जब शाम के टाइम में ऑफिस से लौटे तो उन्होंने शिकायत की, बच्चों ने फलाने जी के यहाँ से बहुत फूल और फल तोड़ के बर्बाद किए हैं। मार तो नहीं पड़ी बट डांट बहुत पड़ी और बाबूजी

0: उसने कहा कि तुम लोग कहीं भी ले जाने लायक नहीं हो। उसके बाद से हम कहीं जाते भी कोई जान पहचान फंक्शन में तो एक या दो भाई बहन ही जाते थे, मतलब सब लोग नहीं जाते थे, क्योंकि सारे भाई बहन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो शरारतें शुरू हो जाती
1: हैं, तांडव हो जाता है एक तरह से सभी बच्चों का। तो और माता पिता वाकई कहते थे कि भी नाक कटा दी तुमने ना,
0: बिल्कुल यही करते हैं ना कि सबको मत लेके जाओ, एक सिर्फ
1: लेके जाओ। और उस घर में जो पीछे वाले बच्चे रोआ करते थे ना, वो भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है आरती,
0: कि हमें नहीं लेके जा रहा
1: है, हमें नहीं लेके गए हैं। और कई बच्चे तो देखा सड़क पर ही लेट जाते थे जिद के कारण, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जहाँ माता पिता बड़े शर्मिंदा होते थे कि भी बच्चे क्या क्या हरकत कर लेते हैं, लेकिन ये बचपन है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बुआ का घर मेरे घर के ही पास था, उनका बेटा मेरे बराबर ही था, हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा दिया। हम दोनों का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्लास की खिड़की बड़ी और सीधी थोड़ा नीची थी, जब टीचर पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके, तब हम दोनों उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे, पकड़े जाने पर डांट खाते थे। वैसे भी हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर बिना बताए निकलकर घूमा करते और फिर बहुत डांट खाया करते थे। लेकिन अब आपको लगता होगा ना कि वो शरारत आपको महंगी भी पड़ गई होगी, आपने पढ़ाई में ध्यान
0: कभी कभी डांट भी पड़ी होगी, कभी कभी मार भी
1: पड़ी होगी।
0: अच्छा मंदाकिनी जी, हम लोगों ने बचपन की बातें बहुत की, एक गीत सुने,
1: चलिए सुन लेते हैं।

0: सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: हाय हाय।
2: तो हमारे और श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती?
3: बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक पड़ोसी दादाजी के जी घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रात को सोते थे। देर रात हम मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उनका ठेला गाड़ी धकेल कर दूर छोड़कर आ जाते थे और सुबह नींद खुलती थी तो दादाजी ठेला गाड़ी वापस धकेल कर घर पर लाते और हमें बहुत ज्यादा बोलते थे।
2: बच्चे मन के सच्चे है ना, यूं ही नहीं कहा गया। बच्चे इतनी शरारत करने के बाद, जब भी कल परसों एक छोटी सी बच्ची से मिली, वो थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज रोती भी आई और जस्ट 5 मिनट बाद वो उतनी ही तेजी से हंसती भी आई। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखिए बच्चे वाकई अद्भुत होते हैं। और तभी कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे, उन्हें पता ही नहीं कि अभी मैं पल पहले क्या कर रही थी 2 मिनट पहले और अब मैं किस रूप में आई हूँ। एक श्रोता लिखती है कि मुझे आज भी याद है, मम्मी जब भी बाहर जाती थी कहीं तो हमें जाने को बोलती थी लेकिन हम सभी भाई बहन उनके साथ नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए कि हम अकेले घर पर रहकर सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घर घर खेलते थे। लेकिन एक दिन खेल खेल में हमारे पड़ोस के एक बच्चे को मेरे बड़े भैया से आंख में कैंची लग गई। माँ तो घर में थी नहीं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। समय रहते इलाज हुआ और आंख बच गई। माँ घर आई और सुना हम सभी भाई बहनों की समूह में कुटाई हुई, लेकिन जब पापा आए तो मेरा भाई जिसकी कैंची लगी थी उसकी एक्स्ट्रा कुटाई हुई। ये बात भी सही है। आज जब ये बातें याद आती है तो उस बच्चे को कैंची लगने वाली बात से दिल धक से रह जाता है।
3: जी बस, बहुत ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाती है।
2: हाँ, ये बात तो आरती हमारे साथ भी होती थी कि जब हम खेलते थे और गिर के आते थे तो हमारी माँ 2 थप्पड़ और लगाती थी, कितना मना किया था तुम्हें फिर भी तुम कहना नहीं मानते।
3: बिल्कुल।
2: तो ये सब चीजें बचपन की हैं। और क्या लिखते हैं श्रोता?
3: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि दर्जा 2 या 3 में पढ़ रहा था। गाँव के खेतों की पगडंडियों से स्कूल का रास्ता था और बड़े भाई साहब के साथ स्कूल जाते थे। माँ ने बताया कि एक बार स्कूल से घर आया तो मेरे दाहिने पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और बहते खून को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने अपने तोतले अंदाज में कहा भैया कहे दौड़ तो दौड़ा और गिर गया।
2: बिल्कुल, बचपन में तो गिरना और उठना यही है। और एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, न कोई फिक्र थी ना जिम्मेदारी थी, बस हर वक्त कोई न कोई नई शरारत सूझती रहती थी। आज बचपन की उन्हीं खट्टी मीठी यादों की गलियों में फिर से घूम आते हैं। घंटी बजाओ और भाग जाओ, डिंग डोंग डिच, ये हम सबका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। दोपहर के समय जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था तब दबे पाँव किसी के घर जाना, जोर से घंटी बजा देना और फिर सांस रोक कर ऐसे भागना जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। छुप कर मकान मालिक का गुस्सा देखना अलग ही रोमांच देता था और नकली भूत का डर जो था डराना, कंबल या सफेद चादर उड़कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी, क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना या रंग बिरंग चौक के जो है जेब में भर लेना, तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग गया हो। तो ये बचपन की यादें इन्होंने साझा की है।
3: बिल्कुल, अब हम बचपन की यादों से बाहर निकलें, थोड़ा
2: निकलना पड़ेगा और हमें मुहावरों की दुनिया में जाना पड़ेगा।
3: बिल्कुल, क्योंकि हमने आज का मुहावरा रखा था 1 से 21 होना। अब 1 से 11 होना तो हमने बहुत सुना है।
2: बिल्कुल।
3: अब हम लेकर आए 1 से 21 होना।
2: हाँ।
3: तो यानी कि हमने उन्नति करी ना।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
3: ये उन्नति तो है। 1 से 21 होना यानी कि उन्नति करना।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है?
3: हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 1 से 21 होना अर्थ है बढ़ना, उन्नति करना या फलना फूलना, बहुत अधिक प्रगति करना या संख्या लाभ में वृद्धि करना। आम दैनिक जीवन में इसका उपयोग इसे आशीर्वाद के रूप में, तरक्की के रूप में करते हैं। और जैसे कि तुम पर कृपा बनी रहे, 1 से 21 हो, जब से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है 1 से 21 हो गया है उनका व्यापार, तो यानी कि उन्नति करते जाने को कहते हैं 1 से 21 हो जाना।
2: हाँ, बहुत अच्छा एक मुहावरा आप लेकर आई हैं हमारे श्रोताओं के लिए। अक्सर क्या होता है 1 और 11 का तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन 1 21 होने वाली जो बात है, 1 से 21 होना वाला, ये जो बहुत कम प्रयोग में आता है लेकिन इसका जो अर्थ है वो उतना ही गहरा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुहावरे का उपयोग, इस खास मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब 2 चीजों में मुकाबला हो और एक चीज दूसरी चीज से हर महीने में श्रेष्ठ हो, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस चीज को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। और हम सबकी जिंदगी में कई बार होता है, लेकिन मेरा कहना है कि इस मुहावरे का उपयोग हमें करना चाहिए जब एक दूसरे के बीच कभी कोई तुलना नहीं करनी हो बल्कि उससे बढ़कर ही कहना हो, वही कि जब उन्नति करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है।
3: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि 1 से 21 होना, भाई ये भी कोई मुहावरा है? हाँ। और अगर है भी तो पहली बार सुन रहे हैं और वैसे भी

0: हमारे यहाँ 1 और 1 11 या फिर 9 2 11 जैसे मुहावरे चलते हैं यहाँ। और 1 और 1 11 का तात्पर्य संघ शक्ति से ही है, क्योंकि मतलब कि शक्ति में, यानी कि 1 और 1 मिलता है तो 11 बन जाते हैं, तो वो शक्ति बन जाती है। तो 1 से 1 से 21 होना भी आप नया जो मुहावरा है आप सुन लीजिए, नया नहीं है ये, पुराना ही मुहावरा है, लेकिन हमने सुना कम है, ये प्रयोग कम होता है,
1: कम प्रयोग में आता है, इसलिए हमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भी 1 और 1 11 होना तो हमने सुना है, या हम 9 2 11 भी जानते हैं, लेकिन ये 21 होना क्या है, 1 से 21 होना,
0: जैसे
1: तो
0: कि
1: मतलब
0: 1 है, 1 से सीधे हम उछल के
1: 21
0: 21
1: बन
0: से
1: गए।
0: पहुंच गए,
1: हाँ
0: यानी कि
1: वही,
0: उन्नति कर ली हमने।
1: बिल्कुल सही बात है। वही
0: जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि 1 का 21 हो जाना यानी संख्या स्थिति में बड़ा फायदा होना, उन्नति करना, फलना फूलना या किसी स्थिति में अचानक बहुत सुधार होना, व्यापार में सही फैसला लेने से मोहन का कारोबार कुछ ही दिनों में 1 से 21 हो गया। इन्होंने उसका प्रयोग करके भी बता दिया है,
0: जी
1: जैसे हम अपनी कॉपी में लिखा करते थे वैसे ही इन्होंने भी बताया है कि ये ऐसे प्रयोग में आता है मुहावरा।
0: हाँ, एक और साथी हैं जो इसी तरह से बात बता रहे हैं कि इसका मतलब है आशीर्वाद रूप से कहा जाता है इसे, और आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें, और एक एक मतलब करके आप 21 गुना ज़्यादा प्रगति करें, यानी कि और ज़्यादा बढ़ोतरी करें।
1: हाँ वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुहावरा 1 से 21 होना का अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना, तरक्की करना या गिनती में बढ़ जाना। ये मुहावरा गणितीय और व्यवहारिक संख्या बल पर आधारित है, जहाँ संख्या एक अकेलेपन और कमजोरी को दर्शाती है, वहीं 21 एक बड़ी और शुभ संख्या मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी स्थिति को बहुत कम समय में कई गुना बेहतर कर लेता है तो उसे 1 से 21 होना कहा जाता है।
0: जी बिल्कुल, और हम और भी हमारे जो साथी हैं वो भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि उन्नति करना इसका मतलब है, आशीर्वाद देने में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि 1 से 21 हो जाए, यानी कि आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इसी तरीके की बातें लिखी हैं हमारे बाकी साथियों ने भी। अब एक गीत सुने।
1: हाँ गीत सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता जो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं, और कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा ये आरती
0: जी बात तो सही कही
1: तो
0: आपने।
1: देखिए हमारे
0: जी
1: एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब एक ही चीज दूसरी चीज से हर महीने में, हर मायने में, महीना लिख रखा है हमारे श्रोताओं ने,
0: अच्छा
1: हर मायने
0: मायने।
1: में श्रेष्ठ हो,
0: जी
1: तब इस बात को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, 1 से
0: जी
1: 21 होना। और वहीं हमारे श्रोता जिन्होंने अभी हमारा पिछला सेगमेंट था ना हल्की फुल्की बातें में बचपन की यादगार जो शरारत,
0: जी
1: उसमें
0: शरारत।
1: भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी शरारतें अभी तक हमें लिख भेज रहे हैं। वो लिखते हैं, पढ़ दो तुम कहो तो,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो लिखते हैं कि हमारी बेटी का भी यही हाल था। एक दिन हमने बहुत कुछ बनाया, ननंद आने वाली थी और सबको समझा दिया कि ये सब एकदम सर्व करेंगे तभी पता चलेगा, पर बेटी कहाँ मानने वाली थी, आते ही बता दिया। और एक बार हम दूध रख कर भूल गए और बर्तन भी थोड़ा जल गया, तो हमने
0: अच्छा
1: बच्चों से कहा कि
0: हाँ
1: पापा को आते ही ऐसी बात नहीं बताएंगे, पर क्या उसने आते ही बताया पापा, ऐसा हो गया। और तो और मम्मी को भी ये बताने के लिए उन्होंने मन बना लिया। तो इस तरह की शरारतें हम बचपन
0: ये
1: में किया
0: अक्सर ऐसा
1: करते
0: होता
1: थे।
0: है जब हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं ना कि ये बात आपको नहीं कहनी है, तब तो वो जरूर उस बात को कहते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शैतानियां तो बहुत है, लेकिन बात है गर्मी की छुट्टियों की, जब हमारे घर के बड़े आराम किया करते थे और हम सब दोस्त पास के एक झरने में नहाने भाग जाते थे, और वहां नहाने के लिए सब अपने कपड़े उतारते, पानी में कूदते, तभी मैं और मेरा दोस्त उनके कपड़े उठा के भाग जाते थे और आधा किलोमीटर उनको दौड़ा दौड़ा के ही कपड़े दिया करते थे।
0: एक छोटा सा एक
1: जी
0: हमें संदेश भेजा तो वो भी हम पढ़ देते हैं।
1: जी
0: एक हमारे साथी जो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था, 6-7 साल का रहा होगा, तो उस समय मैं स्कूल बंक करके, स्कूल को अपने पीरियड छोड़ करके, मैं अपने नेबर के हाउस में, अपने अपने पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाता था, वहाँ पे मतलब बैठा रहता था, वहाँ नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो इस तरीके की शरारतें भी हैं
1: वाकई
0: लिखी
1: बहुत
0: हैं,
1: आज मन
0: और
1: खुश
0: आज वो
1: हुआ।
0: इंजॉय कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट, सोचिए।
1: हाँ अच्छा, आज वो अपना मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया है और वो
0: जी
1: बचपन की यादों को भी ताजा कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: बहुत खूब। तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आरती, सुन लेते हैं गीत।
0: हाँ।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी अभी देखिए, हमारे एक श्रोता लिखती हैं, हमारी सखी, कि आज विषयों पर बढ़िया जानकारियां, मधुर गीतों के साथ, बढ़िया प्रस्तुति के साथ सखी सहेली कार्यक्रम आपने पेश किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हैं।
3: बिल्कुल। और एक हम अपने साथी का छोटा सा भर देते हैं, उन्होंने अपनी शरारत जो लिखी है, लिखती है कि बचपन की शरारतें कितनी मासूम होती हैं, इसका सबसे प्यारा किस्सा हमारी बेटी का है। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार बस वाले भैया से कह देती, हमारी छोटी बहन आज स्कूल नहीं जा रही है, आप चलिए। असल में स्कूल बस हमारे घर से थोड़ी दूर एक मोड़ पर आती, हमारी बड़ी बेटी पहले ही वहां पहुंच जाती और हम छोटी बेटी को पीछे पीछे लेकर आते। उसकी ये छोटी सी शरारत हमें बार बार हंसा देती थी और आज भी जब वो याद आती है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती, बचपन की जो बातें हैं वो कभी भी हमें हंसा देती हैं और गुदगुदा देती हैं। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और हंसे और गुदगुदाएं, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
3: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
2: नमस्कार।
3: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। साई के 4 बजे हैं। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: सेल्यूलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: जी थैंक यू।
1: तनिष्ठा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके, और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले तो।
2: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले, उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो LPs और CDs जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीज़ें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने ज़िंदगी में कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहाँ आऊँगी उसको लेकर।
1: कितनी मज़ेदार बात है कि जब आप देख रही थी तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आई, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड देखा।
2: हाँ जी,
1: है ना। फिर 78 RPM का एक रिकॉर्ड देखा, फिल्म थी यास्मीन।
2: वाओ,
1: 1955।
2: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
1: जी,
2: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
1: जी,
2: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रियन ही हूँ।
1: वाह वाह वाह,
2: क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी।
1: जी जी,
2: हम लोग मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, कीनिया में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में, उसके बाद हम दिल्ली आए। और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज ईयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया,
1: तो दिल्ली जो है वहाँ दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात ये है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूँ उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
2: तो ऑब्वियसली दिल्ली

0: बहुत ही मेमोरेबल है क्योंकि वहाँ से मुझे हर चीज़ जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में मैंने हाफिज़ अहमद ख़ान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए। और म्यूज़िक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूज़िक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब
1: बिल्कुल
0: चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री
1: बिल्कुल
0: फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
1: वो तो मकसद ही है सोसाइटी ऑफ
0: बिल्कुल, कि
1: इंडियन क्लासिक म्यूजिक, वो युवाओं के
0: एजुकेशन,
1: बीच।
0: हाँ
1: हाँ
0: एजुकेशन जो है आप उनको कॉनोसियर्स बनाएं, हर कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए,
1: जी
0: लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
1: क्या बात
0: वो
1: है।
0: एजुकेशन जो है मैं अपने बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो
1: कल्चरल
0: विंटर्स,
1: हब।
0: बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब,
1: त्रिवेणी
0: त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स, जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया कि वहाँ आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डे सिका से लेकर ब्रेसों, सब एलन दलों की फिल्में, सब मैंने इस रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा मतलब आंद्रे वायदा, किशलोवस्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बम्बई जब आई मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या
1: क्या
0: करूं।
1: बात है, बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूँ कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने देखा है
0: हाँ
1: तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था? घर में भी कोई गाता था?
0: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहाँ। तो मेरे पिताजी, वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉरपोरेट गए थे और इंजीनियर और कॉरपोरेट बस। और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था, तो वो इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज़्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी, तब हम लोग नैरोबी में रहते थे, और किसी के घर मतलब जहाँ कोई गा रही थी, उनके घर पे वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी, और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि रे इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता
1: आहा,
0: चला गया। सुनते हैं।
1: क्या बात है। ये हम दोनों फिल्म का गाना, और साहिर लुधियानवी ने
0: बिल्कुल।

0: इस गाने को लिखा था और
1: लिखा
0: जयदेव की तर्ज थी। सुनते
1: जी
0: हैं ये गाना।
1: जी
2: मैं जिंदगी

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया, और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हिरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी, और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज़ कही। उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी, और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना
0: मजेदार है ये।
1: हाँ, बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब

0: गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब कि उम्र हो चुकी है, तो अब वो पेन रहा नहीं है, तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज टू यू नो से दैट
1: ये
0: उस
1: डीप
0: समय,
1: बात है, बिल्कुल।
0: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आप का क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफ़े आज़मी साहब के एक इवेंट पे गई थी, जहाँ उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजिडीज़ के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजिडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई है, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजिडीज़ हमेशा होती है हिट, क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना। एंड वही चीज़ हम बात करते हैं कि जब तक आपको ज़िंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
1: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूँ। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
0: बिल्कुल। तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
1: वाह वाह वाह,
0: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में,
1: जरूर
0: हाँ,

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है।
0: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहाँ भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: वाह, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेस नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू IIT के जो फेस्टिवल्स थे, फिर बिट्स पिलानी में, सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे मेरे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा? और
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे, और दुर्गा पूजा
0: हमारे
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस। तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह। तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है, इतना सारा
1: म्यूजिक उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में। बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
1: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी
1: जी। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूँ कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो NSD के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
0: वाह,
1: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग खराब हो गया।
0: अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक्स में जा रही थी,
1: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई।
0: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
1: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया, और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया, मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: अच्छा।
1: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में US में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
0: वाह वाह। जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शन थे? टीचर मम्मी जी और कॉर्पोरेट पापा,
1: उनको मतलब हार्ट अटैक आया। और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक।
0: तब तक तो काम पूरा।
1: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे।
0: पैसे तो वहाँ ऑलरेडी आ रहे थे।
1: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई। कहती एक बिगड़ गई है, दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे।
0: तो वो सीधी राह पर चली गई।
1: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
0: क्या बात है, हाँ, क्या बात है।
1: हाँ, वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेतरम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और कला क्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी, और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी, और लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं।
0: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
1: और फिर NSD के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम MBA कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत

0: अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी,
1: अच्छा
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी। फिर पापा को मैं कहती थी, अरे मां पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। जूडी डेंच, एन हाथवे, इन सब के साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहाँ वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी MBA किया जाए,
1: मजा आ रहा है
0: क्योंकि
1: मुझे ये
0: पापा,
1: सुन
0: हाँ पापा ने
1: के।
0: ऐसा। तो मैं वहां जब गई और उनके काउंसलर से मिली, तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए। कहते नहीं नहीं नहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
1: आप यहां पढ़ो मत।
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक दे के अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था। सो आई वाज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे MBA करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो।
1: फिर मामला टल गया।
0: फिर हाँ, परमानेंटली मामला टल गया।
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
0: हाँ, ऐसा, दैट इज द थिंग, दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज वॉट हैपन्स टू यू वाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स। तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई। अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं, बट
1: उस फिल्म का
0: अगेन
1: नाम है फुल प्लेट।
0: फुल प्लेट। अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई। इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ, जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है। और
1: लेकिन ये बन
0: ये
1: गई।
0: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं बना दो, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय।
1: ओहो वाह
0: हाँ,
1: वाह,
0: तो तब मैंने लिखना शुरू किया, और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे।
1: क्या बात है। तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे क्या काम
0: हाँ,
1: करता है।
0: एक चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है। नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में। मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है। और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स दी एंड नसीर सर आए, और उन्होंने उन सब चीज़ों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की। और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है।
1: वाह क्या प्यारी बात
0: तो
1: कही है।
0: मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक वो चीज़ जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ, और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड। उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, और उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था। उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हौर ता हबे,
1: वाह
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था।
1: क्या बात है, क्या बात है। और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोलते
0: जा
1: हैं।
0: हौर ता हबे।
1: वाह कितना सुंदर ये वाक्य है। यहां एक गाने की जगह बनाई जाए। अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है
0: हाँ जी,
1: तो एक सजेशन करता
0: आप
1: हूं।
0: हाँ बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे,
1: हाँ
0: अलाउद्दीन
1: कि
0: खान साहब का,
1: वो बजा सकते हैं माता
0: या
1: सरस्वती शारदा, जिसका
0: बिल्कुल
1: कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से
0: सब,
1: है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास
0: या
1: जाती है
0: बिल्कुल
1: और फिर वो फिल्म आलाप में आती है।
0: बिल्कुल
1: ये सुनते हैं। ये
0: हाँ
1: समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब
0: सब,
1: को, मैहर घराने के संस्थापक,
0: या
1: और पंडित रविशंकर।

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं। आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं। पीछे की तरफ केमिस्ट्री है।
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है।
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन। और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाई द सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग। और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो, कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया।
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी, और हमारी जो टीचर हुआ करती थी जो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी पढ़ाती थी, वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी। सो आई वॉज सो मच इन लव विथ, और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में। फिलिप जॉन्ते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था।
0: बिल्कुल।
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं। और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए, तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिज़ाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद

0: हमें चूज़ करना होता है, तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो।
1: क्या बात
0: डिज़ाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो। तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
1: और
0: और
1: एक्टिंग की तरफ आगे
0: एक्टिंग की
1: बढ़ती गई।
0: तरफ।
1: एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे, आपके बैचमेट्स?
0: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में। अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी
1: जी,
0: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था, और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं, और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे,
1: वाह वाह,
0: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई, और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओ माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी।
1: बिल्कुल।
0: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है, शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आईं, फाइनेंशियल दिक्कतें आईं, जब बड़े मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट ख़त्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस, और उसके दौरान मैंने पिक्चर ख़त्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका। सो इट वॉज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट देन लाइक आई सेड कि आई थिंक नो पेन नो गेन।
1: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी हुई। क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
0: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी
1: इससे पहले बना चुकी
0: इससे
1: थी
0: पहले,
1: आप? जी,
0: हाँ, और
1: नवाज थे उसमें।
0: नवाज नवाज था उसमें, और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है, तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे एज को एक्टर्स। तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में, उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे, नवाज और मैंने एज को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ
1: एनएसडी में।
0: ड्रामा से, हाँ। तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट,
1: क्या हुआ था आपके साथ
0: फिर
1: रोम में?
0: मतलब
1: वेनिस
0: सुपरनैचुरल
1: में
0: स्टोरी थी,
1: सुपरनैचुरल।
0: हाँ मतलब वो एक्सपीरियंस। खैर देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसको मैं बनाऊंगी, मैंने
1: राइट।
0: सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। सो उसी ने मुझ में ये कीड़ा
1: डाल दिया।
0: इंसर्ट किया।
1: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
0: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने।
1: शुरुआती दिक्कतें क्या थीं?
0: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म, बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, उसके बाद पैंडेमिक आ गई तो सब कुछ बंद हो गया। सो लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडन्ट डू एनी थिंग विद द फिल्म लेटर, मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम,
1: अभी
0: पता नहीं। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए है, अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैट अटैट वो डायरेक्ट किया मैंने, और फुल प्लेट मेरी सेकंड फीचर फिल्म है जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया, वहाँ मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला, फिर
1: वाह
0: फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला, केरला मैंने बताया केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल धर्मशाला इसमें हमने स्क्रीनिंग की, अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की।
1: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
0: बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी।

0: पी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो। तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज के तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह के फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है।
1: यहां तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीज़ों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहाँ फुल्ली आ गया है।
1: कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना, मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको। और उस हिसाब से आप तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें, क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बिकॉज
1: बिल्कुल।
0: इट इज़ सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है, लेकिन जो गेट कीपर्स हैं जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: गाना कौन सा होगा?
0: बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे

0: क्यों आई है लंबी जुदाई।
1: मजा आ गया, आपकी आवाज क्या शानदार है
0: जी
1: और आपकी
0: शुक्रिया।
1: चॉइस भी, रेशमा की आवाज फिल्म हीरो।

0: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: जी जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहाँ उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट

0: और हमें बहुत मजा आया, और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते
1: वाह
0: थे
1: वाह
0: गाना,
1: वाह।
0: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी,
1: अरे अरे,
0: और हम गांव में मतलब रह रहे थे। इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में, बस यूं ही करके। और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी, और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म।
1: ऑडिशन से मिली थी?
0: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
1: ओहो,
0: हाँ। और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
1: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
0: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे। मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया।
1: क्या बात है
0: कि, और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग।
0: ओके,

0: তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल। क्या बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।

0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते। पीओजेके में जो हो रहा है वो जनता का विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सेना द्वारा अंधाधुंध हत्याएं हैं।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडी उपदेशों को देखना चाहिए। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। विधेयक में प्रावधान है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना पंजीयक को उसके घटित होने के एक वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो जन्म या मृत्यु की प्रमाणिकता के सत्यापन के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट, उपविभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से इसका पंजीकरण किया जा सकता है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत के स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छत पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। सरकार परीक्षण अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का उपयोग शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत कम होगी। इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में आज हल्की वर्षा हो रही है। ओडिशा ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कीर्तामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

जय संतोषी माँ फिल्म से लिया गया ये भजन। अभी आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं गुड्डी फिल्म से लिया गया ये भजन वाणी जयराम की आवाज़।

तो श्रोताओं, परिणय फिल्म से लिए गए इस भजन के साथ ही आज का ये फिल्मी भजनों का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:25 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

0: युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में। और आज है मंगलवार, तो बातें होंगी, संगीत होगा, आपका मनोरंजन होगा, और कुछ क्या होगा वो बताएंगे आपको इस गीत के बाद। तो चलिए सुनते हैं ये गीत और आपको बताएंगे कि क्यों, वैसे तो आप समझ ही जाओगे कि क्यों हमने आपको ये गीत सुनवाया, लेकिन फिर भी तब तक इंतज़ार करिए कि क्यों सुनवा रहे हैं हम आपको किशोर कुमार की आवाज़ में डॉन फिल्म का ये गीत।
1: भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: तो स्वागत है आपका युवा मंच साथ सुनने वाले सभी युवा साथियों का इस कार्यक्रम में। और आप समझ गए होंगे कि क्यों हमने ये गीत सुनवाया आपको, शायद अंदाज़ा आपने लगा लिया।

योगा आज है मंगलवार और मंगलवार को हम बात करते हैं सैर सपाटा में किसी शहर पर। तो आज हम आपको भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले बनारस यानी वाराणसी की सैर पर ले चलेंगे। वाराणसी को काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक माना जाता है और हजारों वर्षों से ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रहा है बनारस। बनारस गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ के घाट इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ऐसा माना जाता है कि शहर लगभग 80 से अधिक इस शहर में घाट हैं, जिनमें दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं और सुबह के समय घाटों पर उगते सूरज का दृश्य और शाम की भव्य गंगा आरती पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो और भी बात करेंगे वाराणसी शहर के बारे में एक गीत के बाद।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: तो युवा दोस्तों, आज हम सैर सपाटा में बात कर रहे हैं भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले बनारस यानी वाराणसी के बारे में। बनारस का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है काशी विश्वनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। धार्मिक महत्व के साथ साथ बनारस शिक्षा और संस्कृति का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। वहीं सारनाथ वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। बनारस अपने संगीत, शास्त्रीय कला, रेशमी साड़ियों और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। बनारसी पान, कचौड़ी, चाट और लस्सी का स्वाद यहाँ आने वाले पर्यटकों को हमेशा याद रहता है। बनारस की झलक कई फिल्मी गीतों में भी मिलती है जो इस शहर की रूहानी और रंगीन खूबसूरती को बेहद खूबसूरत दर्शाता है। तो ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक और गीत।

तो युवा साथियों, हम सैर सपाटा में बात कर रहे हैं बनारस शहर के बारे में। बनारस, जिसे वाराणसी और काशी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसे विश्व के सबसे प्राचीन निरंतर बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान शिव की नगरी है। बनारस का नाम दो नदियों, वरुणा और असी के नाम से पड़ा है। इन दोनों नदियों के बीच बसे क्षेत्र को वाराणसी कहा गया, जो आगे चलकर बनारस के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

तो युवा साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम सैर सपाटा में बात कर रहे हैं वाराणसी शहर की, बनारस की पहचान। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, रेशमी साड़ियों से भी है बनारसी साड़ी। अपनी उत्कृष्ट बुनाई, जरी के काम और आकर्षक डिज़ाइनों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वाराणसी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख कर्म भूमि रही है। महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने इसी शहर में अपनी कला को नई ऊंचाइयां दी थी। बनारस से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। आस्था, इतिहास, संगीत, शिक्षा, कला और स्वाद का अनोखा ही संगम है बनारस, जो कि भारत के सबसे विशिष्ट शहरों में शामिल है।

बनारस केवल एक शहर नहीं बल्कि एक अनुभव है जहां हर घाट, हर गली और हर मंदिर अपनी एक कहानी सुनाता है। तो आज के सैर सपाटा में बस इतना ही। नर्मदा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित बरेले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, आपको बता दें कि सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:05 पर। किसान व बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर।

एक ही कलाकार शीर्षक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाए कुछ चुनिंदा गीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 पर। 9:30 पर सुनिएगा लोकगीतों का कार्यक्रम धाम गीता दी, और रात्रि 10:30 पर पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत।

आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, संसद समीक्षा रात्रि 8 बजे, 8:45 पर समाचार संध्या न्यूज़ एट 9 रात्रि 9 बजे और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। छह बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगौड़े अपराधियों को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगौड़ा आर्थिक अधिनियम लागू हुआ और भगौड़े के खिलाफ एकीकृत, खुफिया आधारित व प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया गया, जिससे भगौड़ों को वापस लाने का रास्ता साफ हुआ। मोदी सरकार ने भगौड़ों के प्रत्यार्पण को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया और वर्ष 2019

0: एनआईए संशोधन अधिनियम और यूएपीए संशोधन अधिनियम लेकर आई व 2020 के बाद भगौड़ों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया को मिशन मोड में आगे बढ़ाया गया। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती पर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रिमंडल के सदस्यों और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच विधानसभा परिसर में भी डॉक्टर परमार की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर परमार के आदर्श व उनके दिखाए मार्ग से प्रेरणा लेकर प्रदेश के विकास व जन कल्याण के लिए कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: परमार साहब की जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को और जो परमार साहब का सपना था कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसको हम अपने योजनाओं में डालकर धरातल में लाकर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार गांव में CBSE योजना लेके आई, दूध का MSP लेके आई, गांव में जो वन लगाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लेके आई, गांव में बैठे व्यक्ति के आय को बढ़ाने के लिए योजना लेके आई, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार को जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल के गठन से लेकर पूर्ण राज्य बनने और विकास की गाथा लिखने में सबसे अहम भूमिका हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो सपने उन्होंने देखे और उनके द्वारा बनाई गई ये नीतियां और योजनाएं हिमाचल के विकास में मील का पत्थर साबित हुई हैं। जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम में हिमाचल की विकास यात्रा पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री पर कहा कि सरकार ने हिमाचल की विकास यात्रा में डॉक्टर परमार के योगदान के बाद अब सुक्खू सरकार के योगदान का जिक्र करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक ने कहा है कि BBMB ने हिमाचल में स्थित भाखड़ा बांध के गोविंद सागर जलाशय में डीसिल्टेशन की पायलट परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में पूछे गए अतारांकित सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के तहत बिलासपुर के लुहणु ग्राउंड और सीरखड क्षेत्र में अगले 10 वर्षों के दौरान लगभग 100 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। श्रीपद नायक ने बताया कि इन परियोजनाओं को राजस्व सृजन मॉडल के तहत प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन की ऐतिहासिक विला राउंड सहरगाह के सौंदर्यीकरण कार्य का आज विधायक अजय सोलंकी ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैरगाह के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत यहां विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। अजय सोलंकी ने कहा कि इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन भी लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।
2: विला राउंड नाहन में जो है इसका सौंदर्य करने का बीड़ा हमने उठाया था, आज उसका शिलान्यास रखा गया है और हम चरणबद्ध तरीके से स्टेप वाइज जो है इसको ब्यूटीफाई करेंगे। तो आने वाले समय में इसको टूरिस्ट के लिए भी डेवलप किया जाएगा, ताकि बाहर से जो लोग आए इसको एडवर्टाइज करके लोग विला राउंड का भी आनंद ले, क्योंकि नाहन शहर ऐतिहासिक शहर है। इसके अलावा ओपन जिम का भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है।
0: प्रदेश के परिमंडल कार्यालय और अधीनस्थ सभी प्रवर अधीक्षक अधीक्षक डाकघरों के मंडलीय कार्यालयों में 21 अगस्त को डाक अदालत आयोजित की जाएगी। डाक अदालत में जनता की डाक संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
3: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।

0: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पारसमणि का ये गीत।

केंद्र से कार्यक्रम है सुरमई सांझ। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं। शकील वदायुनी के बोलों को संगीत से संवारा है रवि किशन ने।

नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। इस फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने।

किसान व बागवान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम है मौजा ग्रैदिया और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाई बहनों, बरसात का मौसम प्रकृति का सबसे सुंदर और उपयोगी समय माना जाता है। ये मौसम पौधारोपण के लिए ये सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान पर्याप्त नमी और अनुकूल तापमान पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। यदि हम इस मौसम में अधिक से अधिक पौधे लगाएं तो न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। तो इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे, साथ में आपका मनोरंजन करेंगे लोकगीतों के साथ। तो चलिए सुनते हैं ये लोकगीत प्रदीप परदेसी और साथियों की आवाज़ों में।

0: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
1: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
0: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 94183-35203, 92187-00111।
2: मौजा ग्राई दिया कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, किसान व बागवान भाई बहनों को एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में पौधारोपण और पर्यावरण पर। पौधे हमारे जीवन का आधार हैं, वे हमें शुद्ध वायु, फल, लकड़ी, चारा तथा अनेक प्रकार की औषधियां प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है और जलवायु संतुलित रहती है। किसान भाई बरसात के मौसम में खेतों की मेड़ों, खाली भूमि, सड़क किनारों और सामुदायिक क्षेत्रों में फलदार, छायादार और इमारती पौधों का रोपण कर सकते हैं। आम, अमरूद, नींबू, शीशम, सागौन, अर्जुन, नीम और पीपल जैसे पौधे पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होते हैं। तो और भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं लोकगीत।

मौजा ग्राइंड यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। पौधारोपण करते समय स्वस्थ और गुणवत्ता युक्त पौधों का चयन करना चाहिए। गड्ढों में गोबर की सड़ी खाद डालें और पौधों को पशुओं से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। पौधे लगाने के बाद उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उनका रोपण। तो इसी विषय पर आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता उन्नत किसान सकिदर डोगरा के साथ, जिनसे बात की है किसान मित्र कुशल कुमार ने।

0: खेती बाड़ी कर दे?
1: बिल्कुल कर दे जी।
0: अच्छा कितना के रकबा दो? हाँ
1: डेढ़ एकड़ दे आसपास है।
0: अच्छा किन्ने कनाल होया है?
1: 15-16 कनाल होया।
0: अच्छा तो ये सारी जमीन खेती करने काबिल है?
1: सारी खेती करने काबिल है।
0: क्या क्या खेती कर दे तो? हाँ
1: खेती है, मक्का हुई है, गेहूँ हुई है, रबी की फसल हो गई।
0: हाँ जी
1: बाकी उड़द उड़द की फसल वगैरह जितनी है।
0: बाकी जिया और बी बाने अंदर सब घरे दे होंदे
1: ना? कुछ ब्लॉक दे भी होंदे, कुछ अदरवाइज सजने मित्रा दे भी दे होंदे।
0: अच्छा
1: कुछ घरे दे भी होंदे। हाँ। वो सारे मनाई के कल्टीवेट करदे होंदे।
0: अच्छा हां जी कहंदे देखा ग्राम विच तां ऐसा ही होंदा है जिया। हां मन लिया इस बारी देखे कि कुछ की घर बड़े कद्दू लग गए ना? हां
1: जी
0: या कोई बड़ी बड़ी डानी है तो हां तिने पहला ही बोली दी कि इहदा बी हां जो रखी हलने हो।
1: हां करदे ने भाईचारा होंदा है तां आपस च बंडी चुंडी के काम कर ही लंदे।
0: अच्छा
1: क्योंकि सजने मित्रा भी देना पौंदी तां बाजार च भी देना पैंदा थोड़ा बहुत। ठीक है जी।
0: हां जी जी सिकंदर जी जियां इसके बाद गल करदे हैं ना खाद दी। खाद क्या पांदे तो?
1: हां असीं लगभग ऑर्गेनिक खेती खाद यूज करते हैं। ठीक है केंचुए खाद होई या गोबर दी खाद होई मैं अदरवाइज दूजी यूरिया यारिया बहुत कम यूज करते हैं।
0: अच्छा
1: हां जी
0: हां देखा बड़ी अच्छी गल है कने बड़ी खुशी हुंदी कि जल्लू आहां दे किसान बिना यूरिया बिना किसी केमिकल ते अटके जेड़ी से खेती करा करदे हन कने फसल दा जेड़ा उत्पादन है ओदा रंग रूप कने बनावट कने ते दी चमक भी दिखने काबिल हुंदी।
1: मतलब के उस च बीमारियां घट है ना?
0: हां
1: क्योंकि आदमी सेहत जो परफेक्ट फुल रखदी कने।
0: हां जी
1: बाकी अदरवाइज और चीजें भी सही रहनी है ना?
0: हां जी जी जी जी जी हां जी ता जियां जल जेड़ी तुहां खेती करदे हन इस खेती कियां करदे? बैल वगैरह रखी हो?
1: नहीं असि तकरीबन ट्रैक्टर ने करदे।
0: पहला रखे होने
1: पहला रखे पिछतानी थे पर हूं गां के मुंडे नहीं मिलते इस गल जो।
0: अच्छा
1: हूँ सारे हाँ बुढ़े हो चुके हो तो सारे तो सारा ही लेना पैना ना किसी आदमी का।
0: हाँ।
1: या सजना मित्रा का
0: हाँ
1: ही गुजारा सड़ना सा। हाँ जी
0: किन्नी उम्र होगी तो? हाँ
1: ये 65 यार।
0: अच्छा देखा कने 65 साल दी उम्र च भी बिल्कुल तो बिल्कुल हट्टे कट्टे कने बिल्कुल जिया बोलते ना कि खुराक पूरी खाधी हो ना कने हाल भी तो इस टाइम भी जेड़े खेतरा विच जेड़े इतनी धुप्पा च काम करा करदे ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: है ना। जेड़ी तो फसल अपनी बांधते हैं या सब्जी जेड़ी भी है कदी ऐसा भी हो जी कोई बीमारी वगैरह आई
1: है? बीमारी
0: क्या करते फिर
1: दवाई भी छिड़कना पैंदियां?
0: अच्छा।
1: माड़ा मोटा अपने अपने पर्सन जी चीजा है घरेलू।
0: हाँ।
1: वो भी नुकते हैं यूज करना पौंदे तिस नाल भी फर्क पै जांदा।
0: अच्छा
1: नहीं पवे तो फिर बाहरों बाजारों भी लैने पैंदी कंटेनर दवाई वगैरह।
0: हाँ जी
1: वो भी प्रयोग करना पैंदियां
0: जी। तो देखा सिकंदर जी कई तरह दियां ट्रेनिंगां लगदियां कई तरह दे ऐसे कैंप लगदे खेती दे तुहां भी कुछ ऐसी सिखलाई ले कि तुहां
1: अपने? बिल्कुल कई बार सिखलाई तो नहीं पर कैंप जरूर अटेंड करते उन्हां दे विचार असां सुनते हैं उन्हें अपने दिमाग च बिठांदे हैं उन्हें ऐसे प्रयोग करते हैं।
0: हाँ जी देखा जलू हाँ कुछ बाहर जाते हैं ना सीखना?
1: हाँ जी
0: देखा हाँ जलो ग्राए च आई के चो बंदे और सी सिखांदे हैं ना?
1: हाँ जी
0: देखा जी आनंद ही कुछ होर है ना?
1: बिल्कुल कहेंगे साझा करते ना आपू च मिली जुली के।
0: हाँ।
1: कि भाई हाँ गल सीखी आए तुम्हें भी सिखा कहने तुम्हें भी अगर डिवेलप होगा क्या हाँ किले अपने अंदर रखे गए दूए दूए आदमी के डिवेलप होना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: ठीक है जी
0: जी। सिकंदर जी इदे अलावा घर है माल बच्छू क्या रखे?
1: हाँ दो गाय रखी है जी।
0: हाँ जी
1: एक बकरी रखी है तीन तीन बच्चे दते हो?
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी।
0: गाय कुछ नस्ल दियां ने?
1: नस्ल है ना मतलब के जर्सी दियां गाय ने तो नहीं।
0: अच्छा दूध दिनिया?
1: हां दूध दिनिया।
0: किन्ना के दूध होई
1: जांदा? ओ ना इस बता हुण साल साल हुई है कोई 4-5 किलो दूध होई जांदा।
0: अच्छा
1: इंगे तो पहले तो ज्यादा भी होई जांदा 10-12 किलो भी होई जांदा।
0: अच्छा
1: कुछ बेची भी दंदे थे।
0: हां
1: कुछ सजने मित्रा भी दे दंदे थे।
0: हाँ
1: कुछ आहा भी खाई पी लंदे थे।
0: हां जी
1: हां जी हां जी।
0: अच्छा क्या भाव दूध बिकी जाता ग्राए
1: च? ओए तो 40-45 बिच गांव च बिकदा इसते ऊपर तो कोई लंदा नहीं है।
0: देखा भाई अगर ग्राए च एक आपसी भाईचारा हुंदा ना
1: हां जी
0: अगर 45-50 भी बिकी आ तां भी पशुपालक भाई परवाह नहीं मारदा।
1: परवाह नहीं मारदा
0: हां ना।
1: हां जी
0: कने अगर दूए पासे दिखे जाए तां फीड महंगी है खल महंगी होई
1: बिल्कुल बिल्कुल जी हर एक चीज महंगी है 50 रुपए से घट तो कोई है ही नहीं।
0: पशुपालक ये सोचदे कि दूध रेट भी जेड़ा सा बढ़ना चाहिए
1: बढ़ना चाहिए बिल्कुल
0: लेकिन अगर ग्राए दी गल दिखे जाए तां चलो सा
1: ओए सांझा करना पंदे ना। हाँ। उन्हें तो नहीं मैंने राज नहीं

0: खर्चा
1: बहुत ज्यादा पैना पानी उपर उठाने वास्ते क्योंकि यार के गवर्नमेंट को एड दे दिया तो समझो बेनिफिट मिल सकता।
0: अच्छा सिकंदर जी जिंगे तुहां दस्या कि तुहां बकरी भी कपाली होवे
1: शेलू बेचना पौंदे हे पहली बारी काम होया शेलियां देती
0: कितनी सुबह सुई बकरी
1: त्रीया सुईया सुई
0: अच्छा पहला शेलू है ना किलो है
1: मतलब किलो था अच्छा किलो
0: हां बकरी पालक भाई है ना तेने भी 24 घंटे जेड़ा सा ये काम कित्ते हुंदा तेने भी अंदाजा हो जांदा कि इतना के वजन जेड़ा सा इदा आया ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: कने थोड़ा बहुत हो ही जांदा के वरी जियां घट
1: वध आधा किलो दा अगे पीछे हो ही जांदा।
0: अच्छा सिकंदर जी घर जी कितने सदस्य हैं तो? हां
1: तीन सदस्य है एक मुंडा है एक मेरी घर वाली है एक ने कमाया।
0: अच्छा तो खेती दा काम पौंदा सब इकट्ठे लगदे होणे ना
1: सारे करना पंदे जी
0: मजदूर वगैरह दा लगा लंदे
1: के बार मजदूर भी लाना पंदा।
0: अच्छा
1: मेरी जुली काम चलदा ना।
0: हां जी हां जी हां जियां तो हां जिक्र कीता कि जेड़ी तोहां वाल जमीन है
1: हां जी
0: काफी खुली जमीन है ता इससे तो हां कुछ पौधे वगैरह भी लगाए फलदार
1: पौधे भी लाए लीची लाई है अमरूद लाया सेब लाया नींबू लाए ना आंब के बूटे भी लगे ना।
0: हां जी
1: मतलब के सारे मिली जुली के लगभग खाने गुजारा बूटे लाए ना से।
0: अच्छा जियां ये जड़ा इलाका जड़ा पंदरेड़ा है
1: हां जी
0: ता ए तो जियां कोई फसल जो कोई नुकसान वगैरह तो नहीं कुछ
1: नुकसान तो है।
0: हां जी
1: क्योंकि जंगली सुरा नुकसान है बंदरा नुकसान है।
0: अच्छा
1: के जेड़े आवारे पशु छड़े गए ना वो भी कई बार आ जांदे विच वो भी साड़ियां फसलें नुकसान पहुंचा छुटकारा मिली सके।
0: जियां तुहां एक योजना मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना ओहदे बारे च नहीं तुहां पता कीता जी
1: नहीं ओहदे बारे च नहीं कीता
0: तारबंदी वाड़बंदी लगदी है
1: ना ओहदे बारे च कन्फर्म नहीं कीता तुहां सांझो दस्सिया
0: और
1: इस दे बारे च छानबीन करके सांझा करके तुहाडे प्रोग्राम
0: जी जी हां जी
1: हां जी
0: सिकंदर जी अहां दी जिहड़ी बेरोजगार युवा पीढ़ी है ना ਸਾ ਦਿਖਾ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘੁੰਮਾ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕਰਦੀਆਂ
2: ਉਸ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ
1: ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਨਾ ਆਹ ਦੇ ਸਕਦੇ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਉਸ ਤੇ ਕੁਛ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਗਏ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਦੱਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲੀ ਜੁਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਚੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਗੱਲਾਂ ਮਤ ਛੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਬੜਾਓ
0: ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਹਾਂ ਕੰਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਂ ਕੰਨੇ ਮਿਲੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਂ ਅਹਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
2: ਧੰਨਵਾਦ।

0: तो श्रोताओं, आज विश्व भर में जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और पर्यावरण प्रदूषण गंभीर चुनौतियां बन चुके हैं। इन समस्याओं का सबसे सरल और प्रभावी समाधान अधिक से अधिक वृक्षारोपण है। एक पौधा केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा, जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता का संरक्षक होता है। तो आइए, इस वर्षा ऋतु में हम सभी कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल का संकल्प लें। हमारा छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा योगदान साबित हो सकता है। तो मौजा ग्रहणीय कार्यक्रम आज आपने सुना नर्मदा के साथ। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजंग राइंदियां। 7 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छुपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि ये संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वो मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़ककर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मांडविया ने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापूल थोंगसांगना और चालो एम्पोन चारोइन केतमोन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा।
1: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
2: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
2: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के संक में मैं हूँ आपके साथ अशोक
4: और मैं निशा।
3: सभी किसान और बागवान भाई बहनों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
4: जी बिल्कुल, किसान श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान वाणी के माध्यम से हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और शनिवार संध्या 7:10 से लेकर 7:45 तक प्रसारित किया जाएगा। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाएगा।
3: श्रोताओं, किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको जानकारी देंगे नया बगीचा लगाने की विधि के बारे में।
4: जी,
3: क्योंकि इन दिनों देखो निशा जी, बरसात का मौसम चला है, तो बरसात के मौसम में हम किसानों से निवेदन यही करना चाहेंगे कि इन दिनों जो है खेतों में पानी खड़ा ना रहने दें, क्योंकि खेतों में अगर पानी खड़ा रह जाता है तो इससे एक समस्या ये आ जाती है कि इससे रोगों और कीटों के पनपने की आशंका काफी ज्यादा हो जाती है। तो किसान वो समय रहते जो है पानी निकास का उचित प्रबंधन करें, खेतों से खरपतवारों को निकालते रहें, क्योंकि खरपतवार भी जो है बीमारियों को फैलाने में सहायक होते हैं।
4: जी बिल्कुल, और आजकल रोग और कीट जो होते हैं वो हमारी लगी हुई फसलों में ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो हमारे किसान भाइयों से यही निवेदन है कि समय समय पर अपने खेतों में जाते रहें, अपनी फसलों को देखते रहें कि कहीं उनमें किसी तरह का कोई रोग या फिर कीट तो नहीं लग गया। अगर किसान भाइयों कैसे भी लक्षण आपको रोगों के या कीटों के दिखाई देते हैं तो समय रहते उनका उपचार भी आपको करना है।
3: बिल्कुल जी, साथ ही साथ इस बात का भी किसान भी आप ध्यान रखें कि इन दिनों जो है आपके खेतों में टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, फूलगोभी है, बंद गोभी है, और इसके साथ साथ कद्दू, घिया, करेला, बहुत सारी सब्जियां जो है हमारे किसान भाई इन दिनों लगाते हैं। तो हम किसान भाइयों को यही बताना चाहेंगे कि समय रहते इन सब्जियों को जो है तोड़ें, अच्छे तरीके से ग्रेडिंग करें, पैकिंग करें, और मंडियों में अगर किसान भाइयों आप अच्छे तरीके से इसको बेचते हैं तो अच्छा दाम जो है आपको मिल पाता है। तो इन सब बातों का जो है किसान आप ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, इन दिनों जो है पानी उबाल कर पिएं, और अपने पशुधन का भी जो है आप जरूर ही ध्यान रखें।
4: जी बिल्कुल अशोक, तो आज क्या कुछ खास लेकर आए हैं अपने किसान बागवान भाई बहनों के लिए वो बता देते हैं। आज हम बात करेंगे नया बगीचा लगाने की विधि के बारे में, किस तरह से आप आने वाले दिनों के लिए तैयारी कर सकते हैं, और इसके साथ ही पहाड़ी गीतों से मनोरंजन भी करवाया जाएगा, और आज जानकारी पूर्ण बातचीत भी लेकर आए हैं जिसका विषय रहेगा सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों द्वारा पानी का सदुपयोग, जिसमें डॉक्टर आरएस स्पहिया से जानकारी हासिल करेंगे रविंदर विशिष्ट।
3: बिल्कुल जी, तो निशा जी, कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे काम की बातों से। जैसा कि आपने बताया कि आज का विषय है नया बगीचा लगाने की विधि। सनियो, जब भी आप नया बगीचा लगाएं किन किन खास बातों का जो है इसमें आप ध्यान रखें, और कौन कौन सी मुख्य इसमें विधियां होती है ताकि आपका जब एक बार बगीचा लग जाता है तो उसके बाद जो है कोई भी दिक्कत आपको ना आए, क्योंकि काफी लंबे समय के लिए बगीचे स्थापित हो जाते हैं।
4: जी,
3: तो सनियो थोड़ा सा हम आपको सबसे पहला यही बताना चाहेंगे कि जब भी आप नया बगीचा लगाएं तो बगीचों की रूपरेखा और पौधरोपण की सबसे पहले बात आती है। टेढ़े-मेढ़े पहाड़ी और अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में साधारणतया पौधे कंटूर विधि के द्वारा आप लगा सकते हैं, और जहां छोटे छोटे खेत बने हो या बनाए जा सकते हो वहां पर इन खेतों के मध्य में उचित दूरी पर पेड़ आपको लगाने होते हैं। खेतों की ढलान अंदर की ओर रखें जिससे वर्षा के पानी का सही उपयोग हो सके और भूमि कटाव भी जो है कम से कम हो।
4: साथ ही निचले क्षेत्रों और समतल घाटियों में वर्गाकार या फिर षष्ठभुजाकार विधि से पौधे लगाने की रूपरेखा आप बना सकते हैं। सघन बागवानी के लिए फल पौधे वहीं लगाएं जहां भूमि अधिक उपजाऊ, समतल और अधिक उत्पादन क्षमता वाली हो, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, तेज हवा भी ना चलती हो, इस बात का भी ध्यान आपने रखना है। पौधों को एक दूसरे से उचित फासले पर लगाना जरूरी है। ये फासला फल की किस्म, मूल वृंत की किस्म, मिट्टी की जलवायु और कांट छांट की विधियों पर निर्भर करता है।
3: बिल्कुल जी, सर बात चली है नया बगीचा लगाने के बारे में, तो थोड़ा सा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जड़ों के विकास के लिए ये आवश्यक होता है कि उन्हें फैलने के लिए जरूरी स्थान और आहार मिल सके। इसलिए नियत स्थान पर 1 घन मीटर यानी 1 बाई 1 बाई 1 मीटर का गड्ढा अगर मिट्टी उपजाऊ है तो छोटा गड्ढा भी आप तैयार कर सकते हैं। गड्ढे की मिट्टी को 10 से 12 दिन तक खुला रहने दें ताकि धूप इसमें लग सके। इससे हानिकारक जीवाणु और कीड़े नष्ट हो जाते हैं। पौधा लगाने से लगभग एक माह पहले गड्ढा मिट्टी से भरें और पानी में डालें ताकि मिट्टी ठीक ढंग से बैठ जाए। 30 किलोग्राम खूब गली सड़ी गोबर की खाद और आधा किलोग्राम सुपर फास्फेट इन गड्ढों में आप डाल सकते हैं।
4: जी बिल्कुल किसान भाइयों, ये तो आप जानते हैं कि पौधों को दिसंबर से मार्च के बीच रोपित किया जाता है। दिसंबर में रोपण उपयुक्त माना जाता है। अधिक से अधिक पौधों को जीवित रखने के लिए इनकी सिंचाई भी उस समय जरूरी होती है। रोपित करते समय जड़ों को उनकी सही दिशा में फैला देना चाहिए। पौधों को पौधशाला की भांति ही स्वाभाविक गहराई तक दबाकर रोपित करें। कॉलर रॉट बीमारी से बचाव के लिए पौधे में कलम के जोड़ को भूमि के धरातल से लगभग 25 सेंटीमीटर ऊंचा रखें और इसी तरह आपने कीटनाशक जैसे सेंजो स्केल और वुली एफिड से बचाव के लिए तेल के घोल या फिर कीटनाशी के घोल में इसे डुबाएं या फिर छिड़काव करें।
3: किसानों, अब बात करेंगे सिधाई की। मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम की अगर बात करें तो साधारणतः सेब के पेड़ जो बीजू मूलवृत्त पर तैयार किए जाते हैं, इस विधि से उन्हें सिधाया जा सकता है। मुख्यतः तने से 2 से 3 मीटर की ऊंचाई तक इन्हें बढ़ने देते हैं और फिर इनको काट दिया जाता है। सबसे पहली शाखा भूमि से लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आप रखें और पहले वर्ष मुख्य तने से उगी 2 से 3 शाखाओं को उपयुक्त दूरी देकर विशेष कोण पर रखें। एक शाखा से दूसरी शाखा की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आपको रखनी होती है और दूसरे वर्ष सर्दियों में की गई सिधाई में इन शाखाओं पर 2 या 3 शाखाएं रहने दें। पौधों की वृद्धि होने पर 4 से 6 छोटी शाखाएं इसमें निकलती है और पहले वर्ष विभिन्न दिशाओं में जाने वाली शाखाओं को एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आप रख सकते हैं। सनो दूसरे वर्ष तने पर अधिक संख्या में निकले पर हो 2-3 को छोड़कर बाकी को गर्मियों में काट देते हैं और पौधे को शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरी सर्दी में रोगग्रस्त सूखी या अनुचित शाखाओं स्थान से निकली शाखा को काट दें और आगे की अनावश्यक शाखाओं को भी काटते रहें।
4: बौने मूल वृंतों पर तैयार करने के लिए सेब के पौधों को तकली की आकृति देकर झाड़ीनुमा आकार में सिधाना सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। फलदार शाखाओं को इस तरह से विकसित करें कि धूप और दूसरे बागवानी कार्यों का लाभ पौधों को मिल सके। केंद्रीय अग्रक के रूप को देखकर ही पास की शाखाओं को विकसित किया जाता है ताकि इन पर अधिक बीमों वाली शाखाएं ही बढ़ें। एक नियमित फासले पर केंद्रीय अग्रणी शाखा से शाखाएं बढ़ने दी जाती हैं। पहले वर्ष शीतकालीन कांट छांट के समय 2-3 शाखाओं को ही उपयुक्त नियमित दूरी पर रखें और केंद्रीय शाखा को काट दें। उसके अलावा अगले वर्षों में आप उपशाखाओं को बढ़ने दें।
3: बिल्कुल जी किसानियों, बात चली है नया बगीचा लगाने की विधि के बारे में। तो जब भी किसानियों आप नया बगीचा लगाएं तो इसमें मुख्य कार्य हो जाता है कांट छांट का। फल देने वाले पौधों की कांट छांट आपको करनी होती है और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कांट छांट सर्दियों में आप करें और इस समय पौधों की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है क्योंकि उस समय जो है पौधों पर पत्ते बहुत ही कम होते हैं। केवल रोगग्रस्त और कीड़ों से ग्रसित भागों और आपस में उलझ रही शाखाओं को ही काटें और सूखी टहनियों को भी काट डालें। अधिक आयु वाले पौधों में अधिक कांट छांट करना जो है अनिवार्य हो जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। कांट छांट पौधों के ऊपरी भाग से शुरू करके निचले भागों की ओर आपको बढ़ना होता है। फल देने वाली शाखाओं के बीच उपयुक्त खाली स्थान रहने दें। नई वनस्पतिक वृद्धि में बड़ी बड़ी कोमल शाखाएं निकलती है जो मात्र पौधों के पोषक तत्वों को ही ग्रहण करती है। इन शाखाओं पर फल भी नहीं लगते, इसलिए इनको आपने काट लेना होता है। बड़ी बड़ी शाखाओं को भी जो एक दूसरे के समानांतर फैल रही हो काट दें, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि इस कटे हुए खुले भाग पर धूप से घाव ना हो जाए।
4: जी,
3: इसके साथ कांट छांट में इस बात का भी आप ध्यान रखें कि पेड़ के भीतरी भाग तक अधिक से अधिक प्रकाश और हवा सुगमता से पहुंच सके और स्पर यानी बीमे का संतुलन पूरे पेड़ पर बनाए रखना भी जो है इसमें आवश्यक हो जाता है।
4: तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई नया बगीचा लगाने की विधि के बारे में। किस तरह से आप नए बगीचे की आने वाले दिनों में रूपरेखा जो है वो तैयार कर सकते हो। तो अशोक जी, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अपने किसान बागवान भाई बहनों को सुनवाते हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भी तो सुना आपने कृष्ण लाल सहगल की आवाज में प्यारा सा लोकगीत। लोकगीत के बाद अब आपको जानकारी देंगे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के द्वारा पानी का सदुपयोग। इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर आर एस सिपहिया और उनसे जानकारी हासिल करेंगे रविंद्र विशिष्ट। तो किसान भाई आइए सुनते ये जानकारी।
1: किसान भाइयों नमस्कार, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर एस सिपहिया। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों द्वारा पानी का सदुपयोग विषय पर। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका आकाशवाणी परिवार में।
2: धन्यवाद और सभी सुनने वालों को नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जल प्रबंधन क्या होता
2: है। जी देखिए, आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है कि हम पानी का सदुपयोग कैसे करें
1: जी।
2: तो उसके लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो है जल प्रबंधन, क्योंकि हमें सबसे पहली चीज जो है वो तो जल होना चाहिए हमारे पास
1: जी।
2: अब कई किसान बागवान भाई हमारे खुशकिस्मत हैं जिनके पास जल होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बारिश तो काफ़ी होती है लेकिन फिर भी किसान भाइयों को 7 से 8 महीने पानी की तंगी से जूझना पड़ता है
1: जी।
2: और इसका कारण ये है क्योंकि जो ज़्यादातर बारिश होती है वो हमें हमारे बरसात के मौसम में होती है
1: जी।
2: जो 3-4 महीने होते हैं उसी में ही हमारी 70 से 80% बारिश हो जाती है और जो बाकी 20% या 30% बारिश बचती है वो पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूट होती है।
1: जी
2: तो उससे जो हमारा पानी जितना आता है वो बारिश के मौसम का तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी हमारा बह के नदियों के साथ और उनके साथ उपजाऊ मिट्टी भी हमारी नीचे प्लेन्स में जाती है।
1: जी
2: और हमारा जो सबसे पहला मकसद होता है वो होता है उस पानी को हम इकट्ठा करें।
1: जी
2: जितना पानी हमारे खेत में पड़ रहा है कम से कम वो हम खेत में ही रखें और उस पानी का वहीं खेत में रोक के फिर उसका हम सदुपयोग करें। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए और ये आप और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं और सुनते हैं हम पढ़ते हैं कि धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है और सबने महसूस भी किया होगा किसान भाइयों ने कि पहले जो टेम्परेचर होता था उसके मुकाबले अब 2-4 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। बारिश जो है वो पहले जैसे बरसात के मौसम में आती थी तो हमें पता है बारिश कब आएगी, अब ऐसा हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि कब बारिश आ रही है। कभी हमारी फसल खड़ी है उसके बीच में भी बारिश आ जाती है जबकि हमारे पूर्वजों ने जो मौसम सेट किए थे कि हम इस टाइम सोइंग करेंगे इस टाइम हार्वेस्टिंग करेंगे तो बीच में बहुत कम चांसेस होते थे कि बारिश आती थी, लेकिन अब हर साल हम देख रहे हैं कि बारिश का आने का कोई समय नहीं रह गया है। कभी भी बारिश आती है कभी फसल को नुकसान हो जाता है कभी और या फिर हमारी मिट्टी को बहा के ले जाती है। तो हमारा जो सब पहला मकसद है वो होना चाहिए कि जो खेत में हमारा पानी गिर रहा है हम उसको खेत में ही रखें और उसका जल संग्रहण करें और अगर हम वो पहला स्टेप करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा 50% काम सफल हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब बहुत खूब। डॉक्टर साहब जल संरक्षण की आपने बात की तो मैं जानना चाहूंगा कि जल संरक्षण की कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं, कौन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल कर हमारे किसान और बागवान भाई बहन सिंचाई के लिए जल संग्रहण कर सकें।
2: जी देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम जल संग्रहण की बात करते हैं तो कई विधियां हैं हमारे को सब तरफ से मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि आप ये वाले पॉन्ड बनाइए, आप ये वाले तालाब बनाइए। तो मेरा तो जो सबसे पहला मानना है कि हमारे जो पूर्वज करके गए, हम अगर हम याद करें किसान भाई और सभी जो श्रोता हैं अगर वो याद करें तो जब हम गांव में जाते थे या गांव में रहते थे तो पहले एक तालाब होते थे हर एक गांव में। कांगड़ा में उसे टोबा बोलते थे, कहीं उसको खेतड़ी बोलते थे, कहीं उसको डिग्गी बोलते हैं,
1: कहीं खाल बोलते हैं,
2: खाल बोलते हैं। तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं समय के साथ हमारे जो परिवर्तन आया है, हमारे हम ज्यादा बिजी हो गए हैं और जो हमारे पानी घर घर पहुंच गया उससे भी हमने उन सब चीजों को जो ध्यान रखना छोड़ दिया है। तो उससे क्या हो गया कि वो जो एक पानी का स्रोत होता था एक पूरे गांव में कम्युनिटी टैंक जिसको हम बोल सकते हैं वो एक बहुत अच्छा स्रोत होता, उससे आपके जो पानी का जल स्तर है वो ठीक रहता था। आपके गांव में पशुओं के लिए पानी हो जाता था और अलग से आपके कई जगह तो उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे अगर वो साफ सुथरा है। तो वो जो चीज है हम पीछे छोड़ दिए हैं। तो मेरा तो सबसे पहला मानना है कि वो पंचायत लेवल पे और अपने लेवल पे हम शुरुआत करें कि जो हमारे गांव में या जो हमारी कम्युनिटी में जो ऐसे टैंक थे उनमें अब मेरे को लगता है ज़्यादातर कीचड़ से भर गए होंगे या फिर
0: जी
2: उनके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन हो गई होगी किसी न किसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसका ध्यान नहीं रखा गया है।
0: जी
2: तो मुझे लगता है कि सबसे पहला स्टेप तो है कि हमें उनको दोबारा जीवंत करना चाहिए,
0: जी जी
2: उनके हम दोबारा स्टार्ट करें ताकि
0: जी
2: वो पानी आए, जो भी बारिश होती है वो उसमें इकट्ठा होना शुरू हो,
0: जी
2: तो आपकी आधी समस्या वहाँ से हल हो जाती है।
0: जी
2: दूसरा है कि हम और ज़्यादा जो खेतों में पानी गिर रहा है उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए दो तीन विधियां हैं। एक तो है आप सीमेंटेड टैंक बना सकते हैं,
0: जी
2: रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं वर्षा जल संचयन, से हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा टैंक बनाने की एक विधि होती है जिसको हम पॉलीथीन लाइन टैंक या पॉलीथीन जड़ित जलाशय कहते हैं।
0: जी
2: तो वो जो ये जो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि पॉलीथीन जड़ित जलाशय जो होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है,
0: जी
2: आपके जो कंक्रीट टैंक हैं पानी के टैंक जो बनते हैं
0: जी
2: उनके मुकाबले कम से कम 3 से 4 गुना सस्ता पड़ता है।
0: जी
2: और दूसरा इसका उपयोग सबसे बड़ा ये है कि एक बार जो ये पॉलीथीन जड़ित जलाशय हैं ये बहुत सस्ते इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनको आप रिपेयर कर सकते हैं।
0: जी
2: इसमें शीट लगती है, काली पॉलीथिलीन की शीट लगती है,
0: जी
2: फिर आजकल नीली शीट भी आती है
0: जी
2: वो भी लगा सकते हैं। तो बस उसमें जो जितना बड़ा हमारा जलाशय होगा उसमें अगर अब शीट फट जाती है तो आपको सिर्फ एक शीट चेंज करनी है तो
0: जी
2: आपका जलाशय दोबारा एक नया जैसा बन जाता है। लेकिन जो कंक्रीट टैंक होते हैं उसमें जो एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें क्रैक आ जाए, क्योंकि हम एक पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं
0: जी
2: तो हमने देखा है कि यहाँ पे भूकंप के झटके छोटे मोटे हम सहते रहते हैं, आते
0: जी
2: रहते
0: जी
2: हैं, तो अगर कोई थोड़ा सा भी ज़्यादा रिक्टर स्केल का अगर झटका आ जाता है तो अगर जो सीमेंटेड टैंक्स हैं उनमें ज़्यादातर चांस होते हैं कि क्रैक आ सकता है,
0: जी
2: और एक बार क्रैक आ जाए तो वो टैंक फिर उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता,
0: जी
2: तो वो उसको अगर आपने रिपेयर करना है तो पूरा का पूरा आपको दोबारा सारा बनाना पड़ेगा, उतना ही खर्चा करना पड़ सकता है।
0: जी
2: तो उसके लिए लेकिन जो प्लास्टिक वाला टैंक है उसमें सिर्फ आप शीट बदलेंगे तो आपका टैंक बिल्कुल नया हो सकता है। एक उदाहरण दूं मैं, आपका जो 50,000 लीटर का या 50 क्यूबिक मीटर का टैंक जो होता है उसमें अगर हम देखें तो वो एक जो सीमेंटेड टैंक है वो कम से कम आपका 2-3 2-2.5 लाख रुपए का बनेगा,
0: जी
2: लेकिन जो ये जो पॉलीथीन जड़ित जलाशय है ये आपका कम से सिर्फ 30 से 40 हज़ार रुपये में बन जाता है।
0: जी
2: इसमें जो शीट लगती है वो सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये की लगती है, तो
0: जी
2: आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप शीट फटेगी तो आपको एक शीट किसी वजह से डैमेज हो सकती है,
0: जी
2: या तो जानवर जा सकता है या फिर किसी पत्थर गिरने से या किसी वजह से हो सकती
0: जी
2: है,
0: जी
2: लेकिन अगर वो सिर्फ एक 7-8 हज़ार चेंज करके आप पानी जो टैंक है आपका बिल्कुल नया जैसा बन सकता है। और दूसरी बात एक और इसमें हम अगर हम इस जलाशय को मजबूत करना चाहें तो मैं मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ईंटों से इसे कवर कर
0: जी
2: दीजिए, इसमें सीमेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ढलानदार टैंक होता है चारों तरफ से जिसको हम ट्रेपिजॉइडल बोलते हैं, ढलानदार होता है,
0: जी
2: तो इसमें आपने सिर्फ ईंटें बिछानी है,
0: जी
2: सीमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। ईंट सीमेंट सिर्फ ऊपर के आधे 1 मीटर में आप लगा दें ताकि कोई पाँव रखे तो ईंटें ना खिसकें,
0: जी
2: और अगर आपने शीट बिछाने के बाद उसके ऊपर ईंटें बिछा दी तो मेरा दावा है कि आपका ये टैंक कम से कम 50-100 साल कहीं नहीं जाता है,
0: जी
2: क्योंकि हम आप नौणी विश्वविद्यालय में हमारे सॉयल साइंस डिपार्टमेंट में आके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने टैंक बनाए हैं तो कम से कम 20 साल तो दो टैंक हैं हमारे पास
0: जी
2: जिनके ऊपर हमने ईंटें लगाई हैं, तो 20 साल हो चुके हैं और उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ है,
0: जी
2: और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगले 30-40 साल भी कुछ नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक रिस्क है कि आपका पेड़ आसपास नहीं होना चाहिए
0: जी
2: कि जिससे कि वो जड़ें नीचे जिस जाके आपकी शीट को फाड़ सके।
0: जी
2: तो ये जो दो उपयोग हैं, दो सुझाव हैं कि आप कोई भी टैंक बनाइए, ये इससे आप जो वर्षा का पानी आपका खेत में गिरता है उसको आप वहीं पर रोक सकते हैं, और दूसरा है कि आप जो आपकी बिल्डिंग्स के ऊपर या फिर आपके घरों के ऊपर जो पानी गिरता है उसका भी आप संग्रहण करें इन्हीं टैंकों के द्वारा, तो इससे जो जितना भी पानी आप इकट्ठा कर सकते हैं वो आपके जो ड्राई पीरियड होता है सूखा समय जिस टाइम बारिश नहीं हो रही होती और
0: जी
2: आपकी फसल को पानी चाहिए तो उसका उपयोग उस टाइम कर सकते हैं।
0: जी यानी कि किसान और बागवान भाइयों की आर्थिक स्थिति के अनुसार विभाग के पास दो तरह तकनीकें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसान बागवान भाई बहन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो बात हुई जल संग्रहण की, कि जल संग्रहण कैसे करें, कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार के टैंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि जल का सदुपयोग कैसे करें, यानी कि जो जल हमने उस टैंक में संग्रहण कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है, उसका हमारे किसान और बागवान भाई बहन अपनी सिंचाई व्यवस्था के लिए किस तरह से उसका सदुपयोग कर सकते हैं।
2: जी देखिए, अब जो अगला स्टेप जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें

0: यही है कि जो हमने पानी इतनी मेहनत से खर्चा करके इकट्ठा किया है
1: जी
0: उसका हम सदुपयोग करें। और इसके लिए जो सबसे अच्छी तकनीकें हैं वो हैं सूक्ष्म सिंचाई हम जिसे कहते हैं, या
1: जी
0: माइक्रो इरिगेशन जिसे कहते
1: जी
0: हैं, वो हम अपने खेतों में लगवाएं ताकि जितना भी पानी हमने इकट्ठा किया है उसका 100% उपयोग हो सके।
1: डॉक्टर सिपैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित रूप से हमारे किसान और बागवान भाई बहन इससे लाभ उठाएंगे।
2: किसान भाइयों, जानकारीपूर्ण बातचीत आपने सुनी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों द्वारा पानी का सदुपयोग, जिसमें डॉक्टर RS सिपाहिया से जानकारी हासिल कर रहे थे रविंदर वशिष्ठ।
1: किसानों, अब आपको कार्यक्रम में इंतजार होगा और एक लोकगीत का, तो आइए सुनते हैं मीनाक्षी तनवर की आवाज में प्यारा सा लोकगीत।

0: श्रोताओं, किसान वाणी कार्यक्रम का समय अब संपन्न हो चला है। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: ये था किसान वाणी कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी शिमला है। 7:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के धर्मशाला हमीरपुर केंद्र के साथ ही एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप डीटीएच सेवा पर भी सुन सकते हैं।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को लाया भारत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, गरीब परिवारों को इलाज की बेहतरीन सुविधा देने के लिए नई स्वास्थ्य बीमा नीति लाएगी सरकार। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जयंती पर किया गया याद। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। शिमला पुलिस ने शोघी के समीप हरियाणा के तस्कर से 1 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 6 करोड़ आंकी गई। और प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में 7 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगोड़ा आर्थिक अधिनियम लागू हुआ और एक एकीकृत खुफिया आधारित व

0: अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस नीति के तहत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई बीमा नीति के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख परिवार शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत बड़े और उच्च स्तरीय अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाणा के लिए 259 सहायक स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भर्ती प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी व मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती पर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रिमंडल के सदस्यों और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बीच विधानसभा परिसर में भी डॉक्टर परमार की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर परमार के आदर्श व उनके दिखाए मार्ग से प्रेरणा लेकर प्रदेश के विकास व जन कल्याण के लिए कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: परमार साहब की जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को और जो परमार साहब का सपना था कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसको हम अपने योजनाओं में डालकर धरातल में लाकर हिमाचल देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार गांव में CBSE योजना लेके आई, दूध का MSP लेके आई, गांव में जो वन लगाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लेके आई, गांव में बैठे व्यक्ति के आय को बढ़ाने के लिए योजना लेके आई, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार को जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल के गठन से लेकर पूर्ण राज्य बनने और विकास की गाथा लिखने में सबसे अहम भूमिका हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार की थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो सपने उन्होंने देखे और उनके द्वारा बनाई गई ये नीतियां और योजनाएं हिमाचल के विकास में मील का पत्थर साबित हुई हैं। जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम में हिमाचल की विकास यात्रा पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री पर कहा कि सरकार ने हिमाचल की विकास यात्रा में डॉक्टर परमार के योगदान के बाद अब सुक्खू सरकार के योगदान का जिक्र करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक ने कहा है कि BBMB ने हिमाचल में स्थित भाखड़ा बांध के गोविंद सागर जलाशय में डीसिल्टेशन की पायलट परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा लोकसभा में पूछे गए अतारांकित सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के तहत बिलासपुर के लुहणु ग्राउंड और सीर खड क्षेत्र में अगले 10 वर्षों के दौरान लगभग 100 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजधानी शिमला में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शिमला जिला पुलिस की स्पेशल सेल ने शोघी के पास हरियाणा के एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस का दावा है कि ये वर्ष 2026 में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी हेरोइन बरामदगी में से एक है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आज हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा की चार्जशीट कमेटी बनते ही सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करना शुरू कर दिया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुक्खू सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर झूठे मुकदमे, FIR, फोन टैपिंग और विधायकों की जासूसी करवा रही है, जिससे कांग्रेस के विधायक असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियां भूल गई हैं और 4 साल के कार्यकाल में ट्रांसफर माफिया व भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राजेंद्र राणा ने कहा कि अगर सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करना बंद नहीं किया तो भाजपा मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट का काले झंडे दिखा

0: कर स्वागत करेगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है और कई स्थानों पर सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। सिरमौर जिला में लगातार हो रही बारिश के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 8 करोड़ 32 लाख का नुकसान हो चुका है। भारी बारिश के चलते नाहन विधानसभा के कटासन में एक खड्ड में 4 गुज्जर परिवारों के 25 लोग फंस गए थे, जिन्हें पुलिस, होमगार्ड और अग्निशमन विभाग के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि बार बार चेतावनी के बावजूद लोग नदी नालों के किनारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिरमौर में अभी तक मानसून की वर्षा से करीब 52 करोड़ 73 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है।
1: जिला सिरमौर में कल रात से और आज सुबह से काफी बारिश रही। इसमें हमारे एक कटासन मंदिर के पास जो जलमूसा खड्ड है, 4 गुज्जर परिवार के 25 सदस्य हैं, वो वहां पे पानी में फंस गए थे खड्ड में। इसमें हमारी पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड एंड होमगार्ड के जवान गए थे और प्रशासन ने उनको मौके पे क्विकली पहुंच गए और वहां पे उनका रेस्क्यू कर लिया और उनको सेफ जगह पे स्थानांतरित किया जा रहा है। अब तक का जो हमारे पास कंपाइल्ड डेटा है, उसमें जो जिला सिरमौर का 24 घंटे का लॉस है वो 8.32 करोड़ का है और अब तक जब से बारिशें शुरू हुई है तब से लेके अब तक 52.73 करोड़ का हमें नुकसान हुआ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कांगड़ा व सिरमौर जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी, शिमला व सोलन में येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला की एक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल चक्कर में आयोजित की गई। बैठक में आगामी संगठनात्मक व जनजागरण कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा कर उनकी रूपरेखा तय की गई। प्रदेश भाजपा सचिव व जिला प्रभारी सुमित शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में प्रदेश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कलश यात्रा, भाजपा का विशाल धरना प्रदर्शन, 10 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा अभियान और 8 अगस्त को शिमला में विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। प्रदेश के परिमंडल कार्यालय और अधीनस्थ सभी प्रवर अधीक्षक, अधीक्षक डाकघरों के मंडलीय कार्यालयों में 21 अगस्त को डाक अदालत आयोजित की जाएगी। डाक अदालत में जनता की डाक संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को लाया भारत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, गरीब परिवारों को इलाज की बेहतरीन सुविधा देने के लिए नई स्वास्थ्य बीमा नीति लाएगी सरकार। हिमाचल निर्माता व प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जयंती पर किया गया याद। प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। शिमला पुलिस ने शोघी के समीप हरियाणा के तस्कर से 1 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 6 करोड़ आंकी गई। और प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में 7 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी प्रसारित किए गए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला से आइए अब सुनते हैं रोजगार समाचार। बाल विकास परियोजना कुमारसिन के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने हेतु आंगनवाड़ी क्षेत्र की सामान्य निवासी महिला जिनका नाम दिनांक 1 जनवरी 2026 को संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र

0: की फिजिंग सर्वे सूची में दर्ज हो कि उम्मीदवारों के दिनांक 22 अगस्त 2026 तक फिडिंग एरिया व पंचायत स्तर के आधार पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है। लाभान्वित होने वाले पोषक गांव उपगांवों के नाम आवेदक आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वे की फिजिक सूची अनुसार ही होंगे। रिवाली श्माथला संपूर्ण ग्राम पंचायत श्माथला के पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित है। दलाड़ आंगनवाड़ी केंद्र दलाड़ पोषक गांव दलाड़ तुलधार गोपालपुर फिजिंग सूची में दर्ज परिवार है। पात्रता संबंधी शर्तें इस प्रकार से है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका हेतु उम्मीदवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए केवल महिला प्रार्थी ही पात्र है। प्रार्थी उस गांव या संबंधित गांव फीडिंग विलेजेस की सामान्य निवासी होनी चाहिए जिस आंगनवाड़ी केंद्र में रिक्त पद भरा जाना है। यदि आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित गांव में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो उसी पंचायत के अंतर्गत इच्छुक पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि पंचायत में भी पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है उसी पंचायत के साथ लगती पंचायत से भी इच्छुक पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसकी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। प्रार्थी का नाम दिनांक 1 जनवरी 2026 को उस आंगनवाड़ी केंद्र के परिवारों की फिजिक सूची में दर्ज होना चाहिए। रोजगार समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर यानी 774 किलोहर्ट्ज पर
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा रैली की जाएगी।

लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता।

0: भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्र प्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने
1: दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, UPPL के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक

2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि SEZ की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है, ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

बैंड 103.4 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गुलाम अली की आवाज में गाई इस गजल के साथ।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल

0: नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
2: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

0: झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
1: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं।

0: मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले दो से तीन दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithivi Krishnamurthy Roy advances to the men's doubles second round at Korea Masters Tournament in Assam. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityananda Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. We have more from a correspondent.
2: The objective of this bill is to prevent delays in the registration of births and deaths and to encourage people to register in a timely manner. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, sub-divisional magistrate or an executive magistrate. The bill further states that if a birth or death is reported to the registrar more than 2 years, it will be registered only on the order of the judicial magistrate of the first class. The bill also mandates that the designated authority must verify the authenticity of the reported birth or death before granting permission for delayed registration. The registration of births and deaths is mandatory and the certificate issued provides legal identity to an individual. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
1: The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases.

0: श्रोताओ, एक ही शीर्षक के अंतर्गत आप सुना करते हैं एक ही कलाकार पर आधारित कुछ चुनिंदा गीत। तो आज हमारे कलाकार हैं गायक किशोर कुमार। तो हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में गाए कुछ गीत।
1: कहती हो सुन रहे ओ लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह, फिर दोनों के दिल धक धक धक धड़के।

ये गीत आप सुन रहे हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, और इसमें किशोर कुमार ने अभिनय भी किया था। आपको बता दें कि आज किशोर कुमार का जन्मदिवस है, 4 अगस्त 1929 को इनका जन्म हुआ था। भारतीय सिनेमा के मशहूर पार्श्व समुदाय में एक रहे हैं, वे एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बंगाली,

हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और उस श्रेणी में सबसे ज्यादा फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया था। उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उस वर्ष के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार, एक नया पुरस्कार हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए चालू कर दिया था। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वहां के जाने माने वकील श्री कुंजीलाल जी के घर हुआ था। किशोर कुमार का मूल नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार 4 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में खंडवा को याद किया। वे जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर या किसी समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे तो गर्व से कहते थे कि किशोर कुमार खंडवे वाले। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति ऐसी श्रद्धा बहुत कम देखने को मिलती है।

किशोर कुमार इंदौर के कॉलेज में पढ़े थे और उनकी आदत थी कि कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाना और दोस्तों को भी खिलाना। वह ऐसा समय था जब 10-20 पैसे की उधारी भी बहुत मायने रखती थी। किशोर कुमार जब कैंटीन वाले के 5 रुपया 12 आना उधार हो गए और कैंटीन का मालिक जब उनको अपने 5 रुपया 12 आना चुकाने को कहता तो वे कैंटीन में बैठकर ही टेबल पर गिलास और चम्मच बजाकर 5 रुपया 12 आना गा गा कर कई धुन निकालते थे और कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर देते थे। बाद में उन्होंने अपने एक गीत में इस 5 रुपया 12 आना का बहुत ही भली भांति प्रयोग किया। बहुत कम लोगों को 5 रुपया 12 आना वाले गीत की ये मूल कहानी याद है।

किशोर कुमार ने 4 विवाह किए थे। विवाह की पहली पत्नी बंगाली गायक अभिनेत्री रूमा गुहा ठाकुर उर्फ रूमा घोष थी। वे विवाह उनका 1950 से 1968 तक चला। किशोर ने दूसरा विवाह अभिनेत्री मधुबाला से किया था। जब किशोर ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था तो मधुबाला बीमार थी और इलाज के लिए लंदन जाने की योजना बना रही थी। इस जोड़े ने 1960 में सिविल विवाह किया और किशोर कुमार इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। कथित तौर पर उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। उनके माता पिता ने विवाह समारोह में भाग लेने से मना कर दिया था। किशोर का तीसरा विवाह योगिता बाली से हुआ, जो कि 1976 से 1978 तक चला, और उनका चौथा और अंतिम विवाह 1980 में लीना चंदावरकर से हुआ था। किशोर कुमार के 2 बेटे अमित कुमार रूमा के साथ और सुमित कुमार

किशोर कुमार की आवाज में गाए कुछ गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। किशोर कुमार की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी से 1946 में हुई थी। इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में, जिसमें उन्होंने देवानंद के लिए गाना गाया था। किशोर कुमार के एल सहगल के विशिष्ट प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने ये गीत उनकी शैली में ही गाया था। जिद्दी की सफलता के बाद उन्हें ना तो पहचान मिली और ना कोई खास काम मिला।

किशोर कुमार ने हिंदी के साथ ही तमिल, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया फिल्मों के लिए भी लगभग 700 गीत गाए। किशोर कुमार को 8 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। उनको पहला फिल्मफेयर पुरस्कार 1969 में आराधना फिल्म के लिए मिला था।

0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि किशोर कुमार को पहला फिल्मफेयर पुरस्कार 1969 में आराधना फिल्म के गीत के लिए मिली थी, जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

किशोर कुमार की विशेषता ये थी कि उन्होंने देवानंद से लेकर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज दी और इन सभी अभिनेताओं पर उनकी आवाज ऐसी रची बसी मानो किशोर खुद उनके अंदर मौजूद हों। किशोर कुमार ने 81 फिल्मों में अभिनय भी किया और 18 फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्म पड़ोसन में उन्होंने जिस मस्त मौला आदमी के किरदार को निभाया, वही किरदार वे जिंदगी भर अपनी असली जिंदगी में निभाते रहे।

प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार की 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से उस समय उनकी उम्र 58 वर्ष थी, उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। अपनी पत्नी लीना चंद्रवरकर के साथ मजाक करते और हंसते हंसते भी अचानक गिर पड़े थे। शुरुआत में उनकी पत्नी को लगा कि वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया और हमने इस सितारे को हमेशा के लिए खो दिया। अभी आप सुन रहे थे गायक और अभिनेता किशोर कुमार पर फिल्माए, उनकी आवाज़ में गाए कुछ चुनिंदा गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम धाम गीतांदी।

विक्रांत की आवाज में ये लोकगीत भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम धाम गीतांदी। अब लीजिए सुनिए इंद्र राज की आवाज में ये लोकगीत।

निमो देवी की आवाज़ में ये लोकगीत अभी आपने सुना। अब हम अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं जोगिंदर सिंह की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धाम गीता दी।

ऋषि कुमार की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का धाम गीतादि कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों के गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। जो नाम लवों पर आए तो बस तेरा आए, जो नाम लवों पर आए तो बस तेरा आए, मेरी मोहब्बत का कोई और सिरा हो खुदा ना करे, तुम्हारी याद से रोशन है मेरी हर धड़कन, ये दिल किसी और का कभी हो

कहीं दिन कहीं रात, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में। एक महल हो सपनों का, इस फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। जिसे भुलाने की कोशिश में उम्र गुजर गई, जिसे भुलाने की कोशिश में उम्र गुजर गई, वो एक नाम हर दुआ में फिर से आ गया है। चांदनी रातों में भी अपनी चमक दिखा गया, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया।

पुरानी फिल्मों से गीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। मशाल फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और श्रोताओं आपको बता दें कि आज का ये सफ़र तय कर रहे हैं आप अपनी दोस्त नर्मदा शर्मा के साथ।

आधा है चांद मेरा, आधी सी रात है, तेरे बिना हर खुशी जैसे कोई अधूरी सी बात है। आधा है चांद मेरा, आधा सा ये जहां, तू साथ हो तो खिल उठे मेरा हर अरमान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने